प्रार्थना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोता और भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।

संगीत का कार्यक्रम आराधना इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति संगीत।

आराधना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोता भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।

0: संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुन रहे थे 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और अब अपनी रेडियो दोस्त पिंकी को दीजिए अनुमति
1: 91.2 MHz पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तेने मैं शशि हाजिर होइयो कार्यक्रम लेकरी माती दी महक तशुतों कर दिन अपने कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीत दे करने तो हाँ सारे इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

दर्शकों तो सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत दर्शकों फिर ते अपने कार्यक्रम च अगे बढ़ना है कने जेड़ा कार्यक्रम दा सफर है सै फिर ते अगे बढ़ाना है फिर ते सुनदे निक प्यारा दिया गीत तो सारे भी सुना कने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं तो हाँ सारे ही सुने ये प्यारा दिया गीत। तो हाँ श्रोताओं फिर ते हाँ अपने कार्यक्रम च अगे बढ़ना है कने जेड़ा कार्यक्रम दा सफर है सै फिर ते हाँ अगे बढ़ाना है फिर ते सुनते निक प्यारा दिया गीत। तो तुम सारे भी सुना कने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्स पर यह तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला श्रोताओं तुहा सारे इस टाइम जिहड़ा कार्यक्रम सुना दे से सुना दे माटी दी महक अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्ने कार्यक्रम च फिर यहाँ अगे बढ़ना है जिहड़ा कि तुहंदा ध्यान है से फिर एक गीत संगीत की तरफ ले चलते हैं।

92.2 MHz पर ये तोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला आशा तो तोहा सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्ने। कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से इत्थी संपन्न होंदा है तो तोहा सारे अपने रेडियो दोस्त शशि जी दी अनुमति कन्ने सुन दे रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो

0: आज ही जाएं Apex Plus Point Authorized Admission Center near Sharma Bakery College Road Civil Line Dharamshala. इनका नंबर रहेगा 9882069977. नंबर एक बार फिर से 9882069977.
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें, PM सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर घर

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: सूर्य घर।
6: सुनो, आपने क्या सोच के मुझसे शादी की थी?
7: सोचने का तो टाइम ही नहीं मिला।
6: क्या मतलब?
7: मतलब सोचने का टाइम ही नहीं मिला, जैसे ही तुम्हें देखा मैंने डिसाइड कर लिया शादी करनी है तो इसी से। सोचने समझे में कोई और भी आके ले जाता तो।
6: आप भी ना।
7: तुम भी ना।

अभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारी से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

2.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर है तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और श्रोताओं आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: घर सूर्य घर।
6: सुनो, आपने क्या सोच के मुझसे शादी की थी?
7: सोचने का तो टाइम ही नहीं मिला।
6: क्या मतलब?
7: अरे मतलब सोचने का टाइम ही नहीं मिला। जैसे ही तुम्हें देखा मैंने डिसाइड कर लिया शादी करनी है तो इसी से करनी। सोचने समझे में कोई और भी आके ले जाता तो
6: आप भी ना।
7: तुम भी ना।

दोस्तों कहते हैं सहनशीलता तब तक सुंदर है जब तक वो सम्मान को बचाए रखे, लेकिन जब कोई आपके स्वाभिमान पर हाथ डाले, उस पे सवाल उठाए, तब मौन रहना हमारी कमजोरी बन जाती है। जीवन में हर जगह अपनी पहचान बचा कर रखिए। नेम प्लेट लगे या ना लगे, लेकिन आपकी मौजूदगी देखकर लोगों को महसूस होना चाहिए कि यहाँ कोई स्वाभिमानी इंसान रहता है। दिखाने के लिए नेम प्लेट लगा दी, लेकिन अंदर जाके देखा तो ना स्वाभिमान की कोई निशानी, ना इंसानियत की कोई निशानी। ऐसा दौर है आज के समय का। नमस्कार दोस्तों, 91.9 ओमेगा हर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी जुड़ चुके हैं इस बहुत ही प्यारे से कार्यक्रम के साथ, अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, ढेर सारी बातों की और ढेर सारे मनोरंजन की और साथ ही साथ ढेर सारी कुछ खास जानकारियों की शुरुआत हो चुकी है। तो अब जो है आप सभी तक स्टेप बाय स्टेप जो है बहुत सारी चीज़ें पहुंचने वाली हैं, कुछ खास खास चीज़ें। बिल्कुल दोस्तों, और आज का दिन भी बहुत खास है, 31 मई 2026 का दिन जिसका बेसब्री से सभी को इंतज़ार है। तो वो दिन आज आ चुका है। धड़कनें और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई हैं, धीमी भी हैं, थामे हुए हैं, पर क्या करें। कहते हैं ना दोस्तों, अंदर से जो उत्सुकता रहती है वो तो तभी ख़त्म होती है या तभी थोड़ी सी शांत होती है जब जो हम चाहते हैं, जिसका इंतज़ार होता है, वो आखिरी समय में पहुंच जाए। तो बिल्कुल अभी तो आपको दिल थाम कर रखना होगा, क्योंकि शायद अभी तो समय होगा आपकी उस उत्सुकता को शांत करने का। तो बिल्कुल दोस्तों, आज रविवार का दिन है, फुल ऑन मस्ती का दिन है, और ख़ास तौर पे बहुत ही खास है आज का दिन। तो क्यों खास है ये भी हम बात करेंगे, जानेंगे। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक और खासियत है, एक तो है ही लेकिन एक और भी है। तो वो कौन कौन सी ऐसी खासियतें हैं जिसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा उन पन्नों को पलटिए और जानिए कि आखिर क्या है आज के दिन में। जी दोस्तों, मैं तो जुड़ी हूँ आप सभी के साथ ढेर सारी बातें, और ये रहस्य, ये जो एक गुपचुप सी बात है, इसे आप सभी तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जब आप तक सभी तक पहुंच जाएगी तब गुपचुप नहीं रहेगी, रहस्य नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको अपने दिमाग पे जोर डालना चाहिए ना, ये भी तो हमारे लिए एक्सरसाइज है। तो ये ना हो तो क्या फ़ायदा। बाकी कामों से तो आज आपने छुट्टी ले ली, लेकिन कुछ घर के काम, कुछ अपना काम, अपने दिमाग पे काम करना, ये बेहद ज़रूरी है। तो बिल्कुल दोस्तों, आज का दिन अपने लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में मनोरंजन की एक प्यारे से गीत के साथ, क्योंकि अब ढेर सारी बातें जो हैं वो तो होने ही वाली हैं, लेकिन साथ में अगर मनोरंजन का तड़का लग जाए तो क्या बात है, सफ़र और भी सुहाना, और भी प्यारा, और भी मनोरंजनमयी हो जाएगा। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम से।

सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी दोस्तों, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये गुड मॉर्निंग धर्मशाला का सफर, यानी कि प्यारे से इस कार्यक्रम का सफर आप सभी एंजॉय करने वाले हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ। तो फिलहाल बातों के साथ साथ मौसम की अपडेट क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि उसी से तो हम खुद को सावधानी और सतर्कता की ओर लेकर जाते हैं। जब हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी प्रॉब्लमें हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, इसीलिए जानकारियां या फिर मौसम अपडेट हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो आइए लेकर चलते हैं मौसम अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, इस समय धर्मशाला के तापमान की हम बात करें तो लगभग 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है आप सभी धर्मशाला का तापमान इस समय महसूस कर सकते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि थोड़ी थोड़ी जो है प्लेसेस के हिसाब से बदलता भी रहता है, कुछ ठंडा इलाका तो कुछ गर्म, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी धूप जो है वो आज खिली खिली सी नजर आ रही है। तो बिल्कुल ठंड के साथ साथ प्यारी प्यारी सी धूप, तिखी तिखी सी धूप, कैसा लग रहा है आप सभी को इस प्यारी सी सुबह की शुरुआत के साथ? जी दोस्तों, तो ये तो था आंखों देखा हाल, लेकिन मौसम विभाग का क्या कहना है, क्योंकि वो तो हमें आने वाले समय के लिए सतर्क करते हैं। तो आए वो भी जान ही लेते हैं। दोस्तों, हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम के मिजाज अब पूरी तरह से बदल गए हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि जैसे जैसे चुनावी माहौल ठंडा होता जा रहा है, उसी तरह से मौसम का मिजाज भी गर्मी से ठंड की ओर बढ़ रहा है। तो बिल्कुल, अगर हम बात करें पिछले कल की और अभी की भी हम बात करें, अगर अंदर रूम में कमरे में बैठे हैं तो थोड़ी बहुत ठंड ज़रूर लगेगी। ठंडी सी बारिश, तो ठंडा सा माहौल जो है वो हो चुका है, लेकिन आज जो है परिणाम का समय है। चुनावी माहौल की बात करें ना दोस्तों, तो थोड़ा सा ठंडा होना ज़रूरी है ना मौसम का, क्योंकि वो भी मौसम गर्माया है और ये भी अगर मौसम गर्मा गया तो फिर लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो थोड़ी सी ठंड तो ज़रूरी है ताकि दिमाग शांत रह सके, ठंडा रह सके। गर्मी के उबाल से दिमाग और ज़्यादा गर्म हो जाता है और फिर तो न जाने क्या क्या हो जाता है। खैर दोस्तों, ये तो कुछ खट्टी मीठी सी बातें हैं और ये तो इसी तरह से ज़िंदगी में चलती रहती हैं। कभी भी किसी भी बात को इतना सीरियसली नहीं लेना कि जिससे ज़िंदगी में आने वाला समय हमारे लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन का या एक पल का सफ़र बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, 31 मई यानी कि आज के दिन के लिए लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर बाकी 10 जिलों में आंधी, बारिश और आसमानी बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से फिलहाल मौसम की अपडेट है और 1 जून को भी प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना है। 2 से 4 जून तक मुख्य रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम सक्रिय रहेगा, जबकि 5 जून को फिर से प्रदेश में मौसम बिगड़ने के आसार रहेंगे। तो ये तो समय के हिसाब से मौसम की अपडेट बदलती रहती है, तो हमें हर समय जो है मौसम के लिए खुद को सतर्क जरूर रखना चाहिए। फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

0: जी। तो और ये प्यारे प्यारे से गीत मनोरंजन आप सभी तक इसी तरह से पहुंचता रहेगा, लेकिन समय है प्रादेशिक समाचारों का। तो बातचीत को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और आप सभी को लेकर चलते हैं प्रादेशिक समाचारों की ओर। फिर से मुलाकात होगी आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि खास ब्रेक के बाद।
1: अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों और चार नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में हुए चुनावों के मतों की गणना आज सुबह 9 बजे शुरू हुई। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। जिला कांगड़ा के 54 जिला परिषद वार्डों के लिए डाले गए मतों की गिनती जिले के 18 ब्लॉक मुख्यालयों में स्थापित मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। इसी दौरान जिला परिषद व ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता से।
2: मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला कांगड़ा के 54 जिला परिषद वार्डों के लिए डाले गए मतों की गिनती जिले के 18 ब्लॉक मुख्यालय में स्थापित मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। इसी दौरान ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। वहीं नगर निगम धर्मशाला और नगर निगम पालमपुर के चुनावों की मतगणना भी सुबह 9 बजे से आरंभ होगी। दोनों नगर निगमों में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से हुआ था, इसलिए मतगणना भी ईवीएम के जरिए ही करवाई जाएगी। प्रशासन ने इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं। मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी मतगणना केंद्रों पर डबल टीयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। सुरक्षा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतगणना केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन, वीडियो कैमरा तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल अधिकृत अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रत्याशियों और उनके अधिकृत मतगणना अभिकर्ताओं को ही निर्धारित नियमों के तहत प्रवेश दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
1: सिरमौर जिला में सभी विकास खंड मुख्यालयों पर मतगणना की जा रही है। मतगणना के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिला में आज जिला परिषद के 54 और पंचायत समिति के 312 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। विस्तृत जानकारी के साथ सिरमौर जिला संवाददाता।
3: सिरमौर जिला में सभी विकासखंड मुख्यालयों पर मतगणना की जा रही है। जिला में कुल 365 उम्मीदवार जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए चुनावी मैदान में है, जिनमें से पंचायत समिति के 143 पदों के लिए 312 और जिला परिषद के 17 पदों के लिए 54 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। मतगणना के लिए कुल 12 टेबल जिला मुख्यालय नाहन में लगाए गए हैं, जहां जिला परिषद के 2 वार्डों के अलावा पंचायत समिति के 12 वार्डों की मतगणना की जानी है। आकाशवाणी समाचार के लिए नाहन से सतीश शर्मा।
1: इधर सोलन नगर निगम व जिला परिषद सोलन तथा पंचायत समिति सदस्यों के वोटों की गिनती भी जारी है। मंडी जिले में जिले के सभी 36 जिला परिषद वार्डों, 14 विकास खंडों के अंतर्गत आने वाले 240 से अधिक पंचायत समिति वार्डों तथा मंडी नगर निगम के 15 वार्डों के लिए मतगणना जारी है। विस्तृत जानकारी हमारे मंडी जिला संवाददाता।
4: जिले के सभी 36 जिला परिषद वार्डों, 14 विकास खंडों के अंतर्गत आने वाले 240 से अधिक पंचायत समिति वार्डों तथा मंडी नगर निगम के 15 वार्डों के लिए मतगणना जारी है। जिला परिषद की 36 सीटों और जिला भर के 240 से अधिक बीडीसी वार्डों के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। वहीं मंडी नगर निगम के सभी 15 वार्डों में चुनाव लड़ रहे 42 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला भी आज होना है। मंडी नगर निगम में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और कई वार्डों में प्रभावशाली निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच सिमट गया है। नगर निगम मंडी में 15 वार्डों में इस बार कुल 42 उम्मीदवार मैदान में हैं। विभिन्न वार्डों में आरक्षण नियमों के तहत अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। जिले भर में मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और शुरुआती रुझानों के साथ ही समर्थकों व प्रत्याशियों की नजरें परिणामों पर टिकी हुई हैं। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल देर सायं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत लंबित भुगतान को चुकाने के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को उनके घर के निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवा, 3 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज चमियाणा, आईजीएमसी शिमला और टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में आधुनिक ऑटोमेटेड लैब स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इन प्रयोगशालाओं में खून के एक ही नमूने से कई तरह की जांच की जा सकेगी। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इसका उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान दिलाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 1987 से विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कल नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान ऐप के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। इस डिजिटल एप्लीकेशन का उद्देश्य देश भर के स्कूलों और कॉलेजों को तंबाकू मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन कैंसर, हृदय रोग, आघात और श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। सचिव ने बताया कि देश भर में अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, आयुष संस्थानों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं में 2000 से अधिक तंबाकू मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। चंबा जिले के बैरागढ़ पांगी वाया साचपास मार्ग पर एक पर्यटक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें 7 पर्यटक व एक चालक शामिल है। बेंगलुरु के ये सैलानी 29 मई को पर्यटन स्थल डलहौजी से साचपास बर्फ देखने निकले थे। अचानक कालावन के पास उनका वाहन गहरी खाई में जा गिरा। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया कि इस दुर्घटना का पता 30 मई को लगा और दुर्गम इलाके में पुलिस और राहत दल का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त उपायुक्त चंबा मौके पर मौजूद हैं और राहत व बचाव कार्यों को संपन्न करवाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से कल से 15 जून तक प्रदेश में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जिला किन्नौर में भी कृषि विभाग तथा आत्मा परियोजना के माध्यम से विभिन्न जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिक ब्यौरा हमारे किन्नौर जिला संवाददाता से।
5: परियोजना निदेशक जिला किन्नौर डॉक्टर रमेश लाल ने बताया कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता तथा जैविक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति है जो स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कृषि ज्ञान पर आधारित है तथा खेती की लागत कम करने के साथ भूमि की गुणवत्ता सुधारने में भी सहायक है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान जिले की विभिन्न पंचायतों और कृषि क्षेत्रों में किसान जागरूकता शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम, खेत प्रदर्शन और समूह चर्चाओं का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, बारिश के बीच तीसरे चरण में सर्वाधिक 80.81% मतदान। नगर निगमों, जिला परिषद, बीडीसी के नतीजे आज। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, अंतिम चरण में रिकॉर्ड 81% मतदान। पंजाब केसरी की सुर्खी है, ऊना में मोबाइल की रोशनी में मतदान, प्रदेश को मिले 1189 और जनप्रतिनिधि। जबकि दैनिक जागरण के मुताबिक, वर्षा के बीच जमकर बरसे वोट। अमर उजाला की एक अन्य खबर है, चंबा घूमने आए पर्यटकों की गाड़ी खाई में गिरी, चालक समेत 8 लापता। दिव्य हिमाचल लिखता है, चुराह के कालावन में 8 पर्यटकों की मौत की आशंका। मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है, बारिश से 14 डिग्री तक गिरा पारा, आज भी तूफान और ओले गिरने का अलर्ट। ओलों से ऊपरी शिमला में सेब की 40 डिग्री फसल बर्बाद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों और 4 नगर निगमों में हुए चुनावों की मतगणना जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। प्रदेश सरकार ने हिम केयर योजना के तहत लंबित भुगतान को चुकाने के लिए 100 करोड़ रुपए किए जारी। और चंबा जिला में पर्यटक वाहन दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 10:45 पर। नमस्कार।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
3: हर घर

दोस्तों, समाचारों और इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और आज का दिन वाकई बहुत खास है कि आप सभी ने उन इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा, जाना और समझा, या फिर बिल्कुल भी नहीं। जी दोस्तों, जब तक हम ये मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम अपनी ज़िंदगी के उन खास पलों की अहमियत भी नहीं समझ पाएंगे जिन पलों से कुछ खासियत हमारी ज़िंदगी में आ जाती है। तो बिल्कुल, हर समय हम बोलते रहते हैं नशा हमारी सेहत के लिए जो है नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी हम नशे के पीछे भाग रहे होते हैं। अपनी सेहत से किसको प्यार नहीं होता, लेकिन जब भी नशे की बात आती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। ना कोई फैमिली, ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई अपना, ना कोई अपनी वैल्यू, यहाँ तक कि हम खुद को भूल जाते हैं कि हम क्या हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो सोचिए कि ये नशा किस तरह से हमारी ज़िंदगी को खोखला करता जा रहा है। तो उसी से जुड़ी आज के दिन की खास बातचीत, और आज का दिन खास रहने वाला है ज़रूर दोस्तों। बात करेंगे, जानेंगे, लेकिन एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।

जी दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और आज के दिन की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, 31 मई 2026 का दिन है। देखिए, मंथ की एंडिंग है, चुनावी माहौल का परिणाम का समय है, और साथ ही आज के दिन आप सभी मना रहे हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। जी दोस्तों, और साथ ही संडे वाला दिन भी है। देखिए, कितनी खास बातें आज के दिन से जुड़ी हुई हैं, और इन पलों को भी अगर हम खास ना बना पाए तो फिर क्या ही फायदा। जी दोस्तों, हर साल 31 मई को दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को इस तंबाकू वाली आदत को छुड़वाने और इसके नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए होता है। कुछ लोग इस आदत को छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। जी दोस्तों, नशा कोई भी है, लेकिन कहते हैं ना, शुरुआत जो होती है इसी से होती है, इससे, या यूं कहें कि स्मोकिंग से। ये सब ये चीज़ें होती हैं जिससे कि छोटी सी आदत बढ़ते बढ़ते कब बढ़ जाती है, कब हम नशीले पदार्थों की ओर बस बढ़ते ही जाते हैं, अट्रैक्ट होते जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो हमें शुरुआत में ही जो है खुद को रोकने की ज़रूरत है, खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। और वो हम कब कर पाएंगे, जब हम हर एक चीज़ के बारे में प्रॉपर पूरी इंफॉर्मेशन नॉलेज गेन करेंगे। हम सिर्फ ये सुनते हैं कि इससे ये फ़ायदा होता है, इससे इस चीज़ के लिए आराम मिलता है, इससे ये होता है वो होता है, सिर्फ कही सुनी सुनाई बातें। लेकिन सेहत हमारी है, बॉडी हमारी है, बॉडी पार्ट्स हमारे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे कौन से बॉडी पार्ट को इफ़ेक्ट कर रही है, कौन से ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर रही है, जैसे कि न जाने आने

वाले समय में हम किस मुसीबत से जूझ रहे हैं। दोस्तों, दोस्तों की हम बात करें तो दोस्ती यारी कुछ समय के लिए अच्छी तो लगती है, लेकिन हर दोस्त बुराई से पीछे हटाए ये ज़रूरी नहीं है। हर इंसान ऐसा आपको नहीं मिलेगा। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बुराई में आपका साथ नहीं देंगे और आपको भी रोकेंगे, लेकिन उस समय हमें वो दोस्त बुरे लगते हैं। और जो बुराई में साथ दे, जो हमें गलत रास्ते की ओर लेकर जाए, वो शायद हमें अच्छे लगते हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सच है कि जब नकारात्मकता ज़िंदगी में आने लगती है तो हम बहुत जल्दी उससे अटैच हो जाते हैं, बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। हालांकि सकारात्मकता की ओर बहुत समय लगता है या उससे पीछे हटते हैं। तो यही डिफरेंस हमें समझना ज़रूरी है इन सब बातों का। अगर हम अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, खुद को सेफ रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। तो फिलहाल ये जानने का सफ़र ही है, ज़रूर जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन उससे पहले आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों, इसी प्यारे से गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब आप सभी को लेकर चलते हैं जानकारियों की ओर। दोस्तों, धर्मशाला के वासी हैं हम और धर्मशाला शहर की हम बात ना करें, स्मार्ट सिटी की हम बात ना करें तो क्या ही कार्यक्रम में बातचीत होगी जी। दोस्तों, तो आइए, ये बहुत ही खास जानकारी धर्मशाला से जुड़ी हुई है तो आप सभी तक पहुँचाते हैं। दोस्तों, ठोस कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कांगड़ा जिला के धर्मशाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत शीला बठेड़ ने ग्रामीण भारत के सामने एक बेहतरीन नजर पेश की है। पंचायत के इस वैज्ञानिक व आत्मनिर्भर वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल को देखते हुए प्रदेश सरकार के पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इसे प्रतिष्ठित राज्य पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2025 से 26 के लिए चुना है। देखिए दोस्तों, कितनी गर्व की बात है। आगामी 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में आयोजित होने वाले भव्य राज्य स्तरीय समारोह में पंचायत को इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाएगा। विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आमंत्रण पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर पंचायत प्रतिनिधियों को विशेष ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र भेंट करेंगे। पंचायत के कुल 5 वार्डों में प्रतिदिन डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करने का अभियान चलाया जाता है। तो दोस्तों, हमें यहीं से मोटिवेशन लेनी चाहिए, खुद को प्रेरित करना चाहिए। देखिए, धर्मशाला में एक ऐसी पंचायत जैसे कि अवार्ड मिलने जा रहा है तो कितनी एक गर्व की बात है। और हम बात करते हैं कि कूड़ा कचरा जो है यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद उस चीज़ पे जो है वो कायम नहीं हो पाते हैं, खुद को उस तरह से शायद मोटिवेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के सहारे बैठे रहते हैं कि ये काम सिर्फ प्रशासन का है। जब हम आपस में मिलकर एकजुट होकर किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए खड़े हो जाएं तो ऐसा पॉसिबल है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं कि हमें किसी की थोड़ी सी हेल्प से फिर जो है वो सारी प्रॉब्लम हमसे दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो कूड़ा कचरा है जब इकट्ठा होता है तो प्रॉब्लमें भी हमारे लिए होती है, ना कि प्रशासन के लिए होती हैं। प्रशासन तो दूर बैठे हैं लेकिन हम वहाँ रह रहे हैं, दिन रात वहाँ जो है वहाँ की हवा में सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, तो मुश्किलें किसके लिए सबसे ज़्यादा हैं? फिर हम क्यों इतने आलसी हो गए हैं, इतने ढीठ हो गए हैं कि खुद मेहनत करने से टलते हैं? हम इतना तक नहीं कर पाते कि जिस तरह से हमें बताया जाता है कि गीला कचरा अलग करना है और सूखा कचरा अलग करना है, हम उसे भी एक बहुत बड़ा बोझ समझते हैं कि कौन करने लगे, फटाफट से लिया और एक ही उसमें डाल दिया। जो लोग कूड़ा इकट्ठा करने आते हैं, सोचिए उन्हें कितनी प्रॉब्लम होगी। आप सिर्फ अलग अलग करके रख नहीं सकते हैं और उन्होंने सोचिए घर घर जाकर जो है कूड़ा कचरा लेकर उन्हें उससे अलग अलग करना, तो हम इतने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं समझ पाते। तो सोचिए हम अपनी प्रगति, अपने समाज की प्रगति किस तरह से कर पाएंगे। अगर इस तरह से हमें भी अपनी पंचायत को, अपनी वार्ड को बनाना है, पुरस्कार के बीच में लेकर आना है एक नई पहचान के साथ, तो ये छोटे छोटे स्टेप हम सभी को लेने होंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रशासन ही सभी काम करे, ये हमें थोड़ा सा अलग ही दिशा की ओर लेकर जाती हैं बातें। ज़रूर हेल्प लीजिए, ऐसा नहीं है, ये हमारे हेल्प के लिए ही चीज़ें बनाई गई हैं, अधिकार हैं, लेकिन हम एक तरह से हर चीज़ से मुंह मोड़ लें तो ये इंसानियत तो नहीं हो सकती, शायद मेरे आइडिया से। बाकी आप बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं छोटी छोटी सी चीज़ों को। घर का कूड़ा बाहर फेंक देना और वो भी हमारे लिए ही मुश्किल होता है, क्योंकि हम यही समझते हैं घर में फैला नहीं होना चाहिए, लेकिन घर के बाहर किसी और के घर के सामने या घर के पीछे फेंक दिया तो बस हो गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत बैड मैनर्स होते हैं, बहुत गलत बात होती है। जब हम घर से उठा सकते हैं तो हम उसे कहीं दूर जला भी सकते हैं या उसे किसी सेफ जगह पे पहुंचा भी सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हम भी कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज के साथ आप सभी ने एंजॉय किया तेरे बिना फिल्म का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। इसी के साथ दोस्तों कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला और समय है एक छोटे से अंतराल का। तो ये बातचीत और मनोरंजन अभी ढेर सारा मनोरंजन जो है आप सभी तक पहुँचने वाला है, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप सभी इसी तरह से एंजॉय कीजिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
3: हर घर

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला में अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी डेली रूटीन के साथ, दिन की शुरुआत के साथ। दोस्तों, जिंदगी से जुड़ी बातें होती हैं और आज वैसे भी हम बात कर रहे हैं एंटी टोबैको डे, नो टोबैको डे। तो दोस्तों, ये जो है नशे की शुरुआत एक तरह से कह सकते हैं और ज़िंदगी में दिशा भटकने की शुरुआत। और कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों के सामने कुछ बातें, या फिर यूं कहें कि बच्चों के साथ बैठकर जब हम ये सारी चीज़ें करने लग जाते हैं तो बच्चे फिर खुद भी शर्म महसूस नहीं करते, फिर उन्हें एक तरह से या तो ट्राई करने की जो क्यूरियोसिटी है, एक्साइटमेंट है, वो एक तरह से जागृत हो जाती है और फिर वो चोरी चुपके या फिर किसी भी तरह से उन चीज़ों को ट्राई करते हैं। और जब मैंने पहले ही कहती हूँ आपसे कि जब बच्चा छोटा होता है ना तो हमें हर एक चीज़ अच्छी लगती है, मजाक लगता है, हंसी मजाक में हम उसे लेकर जाते हैं, लेकिन बच्चा कब उस हंसी मजाक को रियलिटी में बदल देता है ये हमें बाद में पता चलता है। और जब पता चलता है तो फिर हाथों में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पछतावा। दोस्तों, अगर एक बेटी से हम सफर चुनने में गलती हो जाए तो उसे उम्र भर ताने दिए जाते हैं। कहा जाता है, देखा अपनी पसंद का नतीजा, समाज भी माफ नहीं करता, घरवाले भी अपनापन कम कर देते हैं, लेकिन अगर वही गलती माँ बाप के चुने रिश्ते में हो जाए तो बस इतना कहकर टाल दिया जाता है कि बेटी का नसीब ही खराब था। अजीब

राज है ना ये। गलती चाहे किसी की भी हो, सजा सिर्फ और सिर्फ बेटी को मिलती है। वो टूटे तो समझौता, वो रोए तो किस्मत, वो बोले तो बदतमीज, और वो सहले तो संस्कारी कहलाती है। काश एक दिन ऐसा भी आए जहां बेटियों को गलत रिश्तों से निकलने पर दोषी नहीं बहादुर कहा जाए। क्या ये दिन आएगा हमारी जिंदगी में कभी, या बहुत मुश्किल है? क्योंकि आज भी समाज में बेटी होने पे कुछ खुश होते हैं तो कुछ बोझ समझकर जिंदगी भर के लिए उन्हें एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है, तो कुछ को दहेज के नाम पे उनकी ज़िंदगी कुर्बान कर दी जाती है, वो ज़िंदगी छोड़कर अलग दिशा में भटक जाते हैं। तो दोस्तों सोचिए कि बेटियां कब तक बर्दाश्त करती रहेंगी, कब तक सहन करती रहेंगी, क्योंकि बेटियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि माँ बाप की इज्जत से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है। अच्छी बात है, उन्हें भी पता होता है कि समाज में उठना बैठना किस तरह से माँ बाप का होता है, लेकिन क्या एक छोटी सी चीज़ के लिए उन्हें पूरी ज़िंदगी भर सजा दी जाए, ये तो गलत बात है। बेटियां अगर अपने लिए सही डिसीज़न ले सकती हैं, कुछ पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं उनके लिए तो बहुत बेहतर होता है, लेकिन कहीं कहीं अगर उन्हें गलत डिसीज़न पे सपोर्ट ना मिले तो वो फिर उनके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, ज़िंदगी से हाथ धो बैठना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे बेटे हैं वैसे ही बेटियां, और बेटियां बेटों से बढ़कर साथ देती हैं, लेकिन इसमें भी एक अलग नज़रिया है। तो दोस्तों इस पे, इसको मैं नशे से क्यों रिलेट करना चाह रही हूँ, इस पे मैं आप सभी से ज़रूर बात करूँगी, लेकिन उससे पहले आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत कुर्बान मूवी का अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की आवाजों में आप सभी ने एंजॉय किया। 91.2 MHz पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी इस समय अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों एक बात आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी, जब हम पूरे एफर्ट्स के साथ जो है आप सभी तक ये मनोरंजन और जानकारियाँ और बहुत ही खास खास सी बातें जो कि ज़िंदगी से जुड़ी, खास करके मैं अपनी बात करूँ तो दोस्तों ये बातें सच में असल में रियलिटी से जुड़ी होती हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी तो खैर आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि जो आसपास की बातें होती हैं जब तक हम उस पर गौर ना करें, उन पर बात ना करें तो शायद दुनियादारी की बातें करके हम क्या करेंगे, है ना। जब सबसे पहले तो हमें अपने आसपास के बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है, जो क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा है और किन बातों से हमें सीख लेनी है, किन बातों से हमें सबक लेना है। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ये बातें मैटर करती हैं। तो एक बहुत अच्छी सी बात जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है दोस्तों, और मैं आप सभी के साथ भी साझा करूँगी कि एक 10th या +2 12वीं के बच्चे ने अगर आपसे कहा हो कि नहीं आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक अलग ही मतलब कि एनर्जी आ जाती है हम में, तो सोचिए कि बड़ों की बात तो अलग है लेकिन आजकल की एज के बच्चों को अगर आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, रेडियो सुनना, सबसे बड़ी बात कि रेडियो सुनने में वो इंटरेस्टेड हैं, तो कितनी एक गर्व की बात होती है ना दोस्तों, महसूस होता है कि नहीं वाकई में हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दोस्तों तक पहुँच रहे हैं और हमारे दोस्त उससे मोटिवेट भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को एक सही दिशा वो शायद दे पाएं कुछ बातों से, कुछ छोटी छोटी सी बातों को जानकर। क्योंकि अक्सर कई बार हम बहुत बड़ी बड़ी बातें तो सुन लेते हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी बातें जो हमें सीखने लायक होती हैं, जो सबक देने लायक होती हैं, वो हम इग्नोर कर देते हैं। तो अगर उन पे हम नज़र दौड़ा दें, अगर सुनी सुनाई बातें कहीं हमें भटकने से रोके तो शायद इससे बेहतर बात और क्या ही हो सकती है। और सचमुच दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उस बच्ची का नाम भी आप सभी के साथ साझा ज़रूर करना चाहूँगी, शानवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझ तक ये बात पहुँचाई। एक रिव्यू बहुत अच्छा कि एक बच्चा जो 12वीं क्लास में पढ़ रहा है और रेडियो सुन के जो है अपनी ज़िंदगी को मतलब एक अलग डायरेक्शन में अच्छाई के लिए, क्योंकि आज के समय में बच्चे फ़ोन में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि रेडियो की तरफ तो शायद बहुत कम ध्यान देते हैं, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग लोग ही ज़्यादातर सुनते हैं अपना समय जो है वो एंटरटेनमेंट की ओर लेकर जाने के लिए, अपने आप को सतर्क करने के लिए। लेकिन इस तरह से अगर हर बच्चा अपने आप को स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हैं तो रेडियो की तरफ अगर वो खुद को डाइवर्ट करे तो बहुत ही बेहतर बात है। तो बिल्कुल दोस्तों जब आप ऐसा कहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं आपको जो है कुछ हेल्पफुल चीज़ें आप सभी तक पहुंच रही हैं, आप सभी के लिए बेटर जो है कुछ हो पा रहा है, तो इससे बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतना प्यार जो है हम तक पहुँचता है और उसी प्यार से जो है पूरे एफर्ट्स लगाते हैं आप सभी तक ढेर सारी बातें पहुंचाने का, ढेर सारी जानकारियां पहुंचाने का। तो बिल्कुल दोस्तों ये साथ और ये प्यार इसी तरह से बना रहे ये उम्मीद करते हैं और इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने रेडियो सेट पर 91.2 MHz से।

को आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से, और इस प्यारे से गीत से पहले एक रिव्यू आपके साथ शेयर किया। लेकिन हाँ, एक बात मैं और आप सभी से कहना चाहूँगी कि दोस्तों, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि जब हमें अच्छाई के लिए बोला जाए तभी हमें अच्छा लगता है। ये बात मैं आप सभी से इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आने वाले समय में आपके हर रिव्यूज़ जो हैं वो हम तक पहुँच सके। कि दोस्तों, जब आप हमारी अगर प्रोग्राम में कोई कमी भी होती है, कोई गलती भी हो जाती है, तो अगर आप उस पर भी हमें सजेस्ट

करते हैं, एडवाइस करते हैं, तो हमें तब भी बहुत अच्छा लगता है, ताकि हम आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये आप सभी का अपना रेडियो है और आप सभी के अकॉर्डिंग अगर हम अपने प्रोग्राम्स को ढालेंगे, थोड़ा सा मतलब उसमें चेंजेस ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ अपनी गलतियों को सुधार सके, तो ये तो हमारे लिए इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। क्योंकि अच्छाई पे तो हम हमेशा ध्यान देते हैं, लेकिन बुराइयों पे नहीं दे पाते हैं, कमियों पे नहीं दे पाते हैं। तो कमियां जो है, अच्छाई भी आप ही बताओगे और बुराई भी आप ही बताओगे, तो कोई अगर कमी भी रह जाए, कोई गलती हो जाए, तो उस पर भी आप हमें जो है एडवाइस कर सकते हैं, आप हमें जो है सजेस्ट कर सकते हैं कि इस तरह से हो तो शायद ज़्यादा बेहतर है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को सुधार सकें और अपने प्रोग्राम में इम्प्रूव जो है वो कर सकें। तो दोस्तों, आज का दिन बेहद खास है, 31 मई 2026 का दिन है, कल से जून की शुरुआत होने वाली है और एक नए माहौल की शुरुआत होने वाली है। जी दोस्तों, चुनावी माहौल का आज अंतिम दिन है, क्योंकि आज परिणाम जो है वो आप सभी तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद एक नया दौर, एक नई जो है नए सिरे से काम जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसी के साथ दोस्तों, आज जो है आप सभी वर्ल्ड नो टोबैको डे मना रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि तंबाकू मुक्त अभियान भी हिमाचल में चलाया गया है, और जगह भी चलाया गया होगा, लेकिन हिमाचल की हम बात करें तो दोस्तों, समग्र शिक्षा, सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ सुरक्षित, स्वस्थ और सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण विकसित करने की दिशा में लगातार प्रभावी प्रयास कर रहा है, और इसी का परिणाम है कि प्रदेश का एक सरकारी स्कूल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठित टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अभियान के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ है। तो देखिए दोस्तों, कितनी गर्व की बात है, फिर हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। जिला सोलन के पीएम श्री राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नालागढ़ ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के स्कूल चैलेंज TOFIEI के स्कूल जो है 2025 में अवार्ड समारोह में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रोत्साहन पुरस्कार हासिल किया। नई दिल्ली में आयोजित इस राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में समग्र शिक्षा की स्टेट नोडल ऑफिसर वर्षा सूद, जिला नोडल अधिकारी सुमन बाला तथा विद्यालय की शिक्षिका मृणाल ने विद्यालय की ओर से ये सम्मान प्राप्त किया। तो दोस्तों, टोबैको यानी कि तंबाकू मुक्त अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, और उसमें जो है हम सभी का योगदान, हर एक इंसान का योगदान बेहद ज़रूरी है। ये नहीं सोचना है कि हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है तो हम इसमें आगे नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोगों की ये मानसिक सोच ही हमें आगे नहीं बढ़ने देती है कि जब तक हमारे घर तक बात नहीं पहुँचेगी तब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो आप क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके घर में ऐसी कोई चीज़ हो तभी आप आगे आए? क्यों, जब समाज में हमें समझ आ रहा है कि हमारे आसपास ये चीज़ फैल रही है तो हम उस पर आवाज़ उठाएं और घर तक पहुंचने ही ना दें तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर घर तक पहुंचकर उस चीज़ को संभाला जाए वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब इंसान एक बार इस लत में, चाहे नशे की कोई भी लत है, अगर उसमें चला गया तो वो छोड़ना ज़रूर चाहेगा, पर वो मजबूर होता है कि वो छोड़ नहीं पाता। बहुत सारी बातें उन्हें जो है एक तरह से परेशान करती हैं, हम तो उन्हें नशेड़ी घोषित कर देते हैं, लेकिन उनकी खुद से किस तरह से लड़ाई चल रही होती है कभी उनके दिल से पूछ कर देखिए। वो एक बीमारी से जूझ रहे होते हैं और हम उन्हें नशेड़ी का टैग लगा देते हैं, तो वो पहले ही एक तो एक ट्रॉमा से निकल रहे हैं, और हम जब सोसाइटी में उन्हें एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं तो सोचिए वो फिर किस ट्रॉमा में जाएंगे, फिर किस स्ट्रेस में जाएंगे, और उस स्ट्रेस से निकालना शायद बहुत मुश्किल है। लोगों के ताने जो होते हैं वो इंसान को अंदर तक तोड़ कर रख देते हैं। बीमारियों से बचा जा भी सकता है, लेकिन लोगों के तानों से बचना नामुमकिन सा हो जाता है। वो हमें झकझोर कर रख देते हैं और गिरकर उठना मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, ज़रूरत होती है सहयोग की। अगर अपनी सोसाइटी सहयोग नहीं करेगी, उन्हें कॉपरेट नहीं करेगी, उन्हें अपनापन नहीं देगी, तो वो कहाँ जाएंगे? वो तो फिर उस दलदल में ही जाएंगे जिससे वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं जाएंगे, बल्कि आप उन्हें धकेल रहे हैं, उन्हें बोल बोल कर धकेल रहे हैं। तो
सबसे बड़े एक तरह से अन्याय तो आप उनके साथ कर रहे हैं। सोचिए इस बात पे, विचार कीजिए, क्योंकि कहने सुनने तक ये बातें सीमित नहीं रहनी चाहिए। जब तक हम इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हम एक अच्छे इंसान होने का दावा नहीं कर सकते। तो इंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत, उसके बाद फिर से आप सभी के साथ मुलाकात होगी, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ, क्योंकि अभी सफ़र बाकी है।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले समय है एक छोटे से अंतराल का, ज़्यादा समय का नहीं है, बिल्कुल छोटू सा है दोस्तों। तो आइए इसके बाद फिर से ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारी जानकारी आप सभी तक पहुँचाएंगे, क्योंकि अभी समय है हमारे पास। लेकिन आइए लेते हैं ये प्यारा सा ब्रेक।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAAC A+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर

0: दोस्तों, मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ को पकड़ कर रखता है, ठीक वैसे ही शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ कर रखता है। परखने वाले तो बहुत मिलेंगे इस जहां में, लेकिन यदि कोई समझने वाला मिल जाए तो उसका साथ बनाए रखना। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। इसी का नाम है जिंदगी। तो आज तो परिणाम का समय भी है। किस किस को इंतजार है? सभी को तो इंतजार है, बिल्कुल दोस्तों। तो ये इंतजार किस तरह का आपको सुकून देता है या फिर उदासी देता है, तो यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, ये उदासी बस कुछ समय के लिए होनी चाहिए। बस ये सोचिए कि अगली बार इसे बेहतर करना है, जो कमी रह गई उसे पूरा करना है। ये नहीं कि लोगों से भेदभाव कर बैठें, लोगों से बैर कर बैठें, लोगों से बात करना छोड़ दें, क्योंकि यही लोग, अगर अगली बार आपने इस मैदान में उतरना है तो इन्हीं के सहारे, इन्हीं के साथ से आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन इस समय आपने अपने व्यवहार पे सवाल उठवा दिए तो अगली बार मुश्किल हो जाएगा। तो सिर्फ इस समय का सोचकर मत चलिए, थोड़ा आगे पीछे भी ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि इंसानियत सिर्फ अपने स्वार्थ तक सीमित नहीं होती है। हार जीत जिंदगी का एक पड़ाव है और इसी से हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। तो दोस्तों, ढेर सारी बातें हमारी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं, और एक और ख़ास बात है जो आप सभी के साथ ज़रूर साझा करूँगी, लेकिन एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से ढेर सारी बातों के साथ।
1: उसके घर में जाऊँगा, सच कहता हूँ राम कसम, मैं जोरू उसे बनाऊंगा।

उसे बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं जानकारियों की ओर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा पोस्ट कोड 26002 के तहत की जा रही अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट आधार पर 59 और उम्मीदवारों को बुलाया जा रहा है। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि अंग्रेजी शिक्षकों के 312 पदों को भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम 7 मई को घोषित किया गया था और मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। उन्होंने ये बताया कि पदों और उम्मीदवारों की संख्या को देखते हुए अब मेरिट के आधार पर ही 59 और उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मौका दिया जा रहा है। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। और इसी के साथ एक और जानकारी आप सभी के साथ साझा कर रही हूं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और जमा 2 कक्षा की पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट तथा सुधार इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। बोर्ड सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा द्वारा बताया गया है कि अब विद्यार्थी 5 जून तक बिना किसी विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार यदि कोई परीक्षार्थी 5 जून तक आवेदन नहीं कर पाता है तो उसे 10 जून तक 1000 विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही खास जानकारियां आप सभी तक पहुंचाई है गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में रेडियो के माध्यम से और आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अपने इस प्यारे से मनोरंजन के सफर को जारी रखते हुए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा मीठा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया। बिल्कुल दोस्तों, और इसी प्यारे से गीत के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये कार्यक्रम भी बहुत ही पसंद आ रहा होगा। अनुराधा पौडवाल विपिन सचदेवा की आवाजों में था ये प्यारा सा गीत। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और एक बात आप सभी इंतजार कर रहे होंगे कि रुचिका ने बोला तो जरूर था लेकिन उस बात पे बात नहीं की, वो अलग बात है। तो बिल्कुल दोस्तों, अभी समय है हमारे पास और हम जरूर उस पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये अक्सर हमारी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें हैं जो कि हम नजरअंदाज कर देते हैं। और नशे से जुड़ी आज के कार्यक्रम में बात हम कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन ही खास है जी दोस्तों, वर्ल्ड नो टोबैको डे। और शुरुआत यहीं से होती है, और यहीं से अगर क्विट कर दिया जाए शुरुआती दौर में ही, तो जिंदगी संवर सकती है, भविष्य संवर सकता है। अब यहाँ से मैं एक बात आप सभी से ये कहना चाह रही हूँ कि अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, पर यूं कहें कि यहां भी एक भेदभाव आ जाता है। बेटों के लिए माँ बाप जान छिड़कते हैं, चाहे बेटा किसी की जान लेकर आ जाए, माँ बाप उसके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, भले ही उसे शो ना करें लेकिन जी जान लगा देंगे उसकी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए, कहीं सोसाइटी में ये बात बाहर ना आ जाए, कहीं नाम खराब ना हो जाए, हमारे बेटे का नाम खराब ना हो जाए, मतलब हर एक चीज। और नशे की हम बात करें, पता सब होता है माँ बाप को, फिर भी अनदेखा करना, अनजान बनना, या यूं कह देना कि हमारी तो सुनता ही नहीं है, हम क्या ही बोलें। जब सुनने वाला होता है तब आप सुनाते नहीं हैं, तब आप बच्चों को समय नहीं देते हैं, तब आपको अपनी इंजॉय से फुर्सत नहीं होती, या यूं कहें कि अपने काम से फुर्सत नहीं होती। लेकिन अगर जिनको पता है कि हमारे बच्चों को सिर्फ बचपन के कुछ समय के बाद जो है समय देना बहुत ज़रूरी है, अगर वो समय आपने उनको दे दिया तो पूरी ज़िंदगी के लिए आप सुकून की सांस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी इस भाग दौड़ में वही समय गवा दिया, अपनी इन छोटी छोटी सी ख्वाहिशों को पूरा, हर किसी के सपने होते हैं लेकिन सपनों को पूरा करने का भी एक सही समय होता है, अगर उस समय को हम ना पहचान पाए तो क्या फायदा। तो दोस्तों, मैं कहने का मतलब ये है कि बेटियों की बात करें या बेटों की बात करें, बेटी अगर कुछ गलत कर जाए तब तो बवाल हो जाता है, बेटों को, बेटे कुछ गलत करके आए तो बेटों को बोलने से भी डरते हैं कि कहीं बेटा कुछ गलत ना कर ले, कहीं अपने साथ कुछ गलत ना कर ले, तो वो उसकी गलतियों को अनदेखा करते हैं। और माँ बाप पहले जब बच्चे को बिगाड़ लेते हैं और उसके बाद जब बड़ा हो जाता है तो सोचते हैं कि शादी करके किसी और की लड़की जब हम इस घर में ले आएंगे तो वो इसे सुधार देगी, तो उसके जिम्मे उस बात को डाल देते हैं। जब आप बचपन से लेके अभी तक उसे नहीं संभाल पाए तो वो दो दिन की आई लड़की उसे क्या संभाल पाएगी। आप किसी और की बेटी की ज़िंदगी क्यों खराब करते हैं, क्यों उसकी ज़िंदगी को एक तरह से मुश्किलों से भरने की कोशिश करते हैं। पहले अपने बेटे की लाइफ को सेटल कीजिए, उसे सही दिशा की ओर लेकर जाइए, उसके बाद उसकी आगे की लाइफ के बारे में सोचिए। क्योंकि हर कोई इंसान शादी के बाद भी सुधर जाए, अपनी हरकतों से बाज आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें चीज़ों की कदर होती है, इंसानों की कदर होती है, लेकिन कुछ लोगों को आसानी से जब सब कुछ मिल जाता है तो वो ना इंसानों की कदर करते हैं ना चीज़ों की कदर करते हैं, और अपने साथ तो गलत करते हैं लेकिन दूसरे परिवार को भी वो बर्बाद करके रख देते हैं। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान में रखें, खास करके पेरेंट्स, कि अपने बेटे की गलतियों को नज़रअंदाज करके किसी और बेटी का घर बर्बाद ना करें या किसी और बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। इन बातों से ही जिंदगियां बनती हैं और ज़िंदगी के सबक मिलते हैं। तो दोस्तों, अब समय जो है वो धीरे धीरे जाने की ओर इशारे कर रहा है, क्या करें, बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन जाने से पहले एक प्यारा सा गीत आप सभी को ज़रूर सुनाऊंगी दोस्तों। जाते जाते एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों बिल्कुल, जो पैसे या धन दौलत देखकर जब हम किसी की तरफ आकर्षित होते हैं तो वो कुछ समय के लिए ही रिश्तों को हम निभा पाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो आकर्षण खत्म हो जाता है, वो जो एक आज़ादी है वो ख़त्म हो जाती है, तो रिश्ते बोझ लगने लग जाते हैं। तो कभी भी एक शॉर्ट टर्म में किसी के साथ रिश्ता ना बनाएं, इंसान को अच्छे से समझें, जाने परखें और धन दौलत को छोड़कर उसका दिल, उसका व्यवहार देखें। तो दोस्तों कुछ बातें कड़वी होती हैं, वो आपको दिल में चुभेंगी भी, लेकिन सच्चाई कड़वी ही लगती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन हाँ, ये ज़िंदगी की सच्चाई है और इस पर अगर हम काम करें तो शायद कुछ बेहतर हो। तो अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये प्यारा सा सफ़र आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा और आप सभी ने ज़रूर इंजॉय भी किया होगा। तो इसी तरह से एंजॉय करते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। फिर होगी आप सभी के साथ मुलाकात, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की एक अलग बातचीत और प्यारे प्यारे से गीत संगीत के साथ।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: घर सूर्य घर।
6: सुनो, आपने क्या सोच के मुझसे शादी की थी?
7: सोचने का तो टाइम ही नहीं मिला।
6: क्या मतलब?
7: अरे मतलब सोचने का टाइम ही नहीं मिला, जैसे ही तुम्हें देखा मैंने डिसाइड कर लिया शादी करनी है तो इसी से करनी है। सोचने समझे में कोई और भी आके ले जाता तो
6: आ,
7: तुम भी ना।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

0: होने से दुआ लगती है।
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: घर सूर्य घर।
6: सुनो, आपने क्या सोच के मुझसे शादी की थी?
7: सोचने का तो टाइम ही नहीं मिला।
6: क्या मतलब?
7: मतलब सोचने का टाइम ही नहीं मिला। जैसे ही तुम्हें देखा मैंने डिसाइड कर लिया शादी करनी है तो इसी से करनी। सोचने समझे में कोई और भी आके ले जाता तो
6: आ,
7: तुम भी।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ और एक बार फिर से लौट आई हूं मैं एक नई प्लेलिस्ट और उनसे जुड़े कलाकारों के किस्से लेकर। आज की मेरी प्लेलिस्ट उस म्यूजिक कंपोजर जोड़ी के नाम है जिनके म्यूजिक ने रेट्रो एरा में इतिहास क्रिएट कर दिया, बॉलीवुड म्यूजिक को एक नई दिशा दी और प्यार भरे गानों को फिर से ट्रेंड में लेकर के आए। मैं बात कर रही हूं रॉक स्टार म्यूजिक कंपोजर जोड़ी नदीम श्रवण जी की। आशिकी, साजन, दीवाना, दिलवाले जैसे कई हिट्स देकर अपने करियर के शुरुआत के कुछ 7 सालों में ही दोनों ने 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 113 कुल मिलाकर अवार्ड्स जीत लिए। उनके गाने भी सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि 18 और लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किए गए थे। दिलचस्प बात यह थी कि 90s के दौर में बीइंग म्यूजिक कंपोजर्स इनकी फैन फॉलोइंग राजेश खन्ना, सुपरस्टार राजेश खन्ना जी की फैन फॉलोइंग जैसी थी। वैसे दोनों के धर्म अलग थे लेकिन म्यूजिक ने दोनों को जोड़ के रखा। कैसे हुई थी इन दोनों की मुलाकात बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले चलिए शो की शुरुआत करते हैं उस फिल्म के गाने के साथ जिसका म्यूजिक फिल्म के रिलीज होते ही सुपरहिट हो गया था और 2001 में म्यूजिक चार्ट्स पर बना रहा था। मैं बात कर रही हूँ फिल्म कसूर की। आइए सुनाती हूँ आपको अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में अगला गाना।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ और आज मैं आपको सुना रही हूं सुपर हिट गाने नदीम श्रवण जोड़ी के कंपोज किए हुए। वैसे नदीम सैफी जी मुस्लिम हैं और श्रवण राठौर जी हिंदू, और आप सब जानते ही हैं कि क्रिएटिविटी का तो कोई मजहब होता नहीं है, इसीलिए म्यूजिक ने इन दोनों को जोड़ करके रखा। क्या आप जानते हैं कि मुलाकात हुई थी एक स्कूल के म्यूजिक कॉम्पिटिशन में, जहां पर दोनों एज जजेस इनवाइट किए गए थे। वहां पर दोनों की पहचान करवाई हरीश बोबैया जी ने। उस दौर में कई कंपोजर्स जोड़ियों में काम किया करते थे। वैसे भी दोनों का म्यूजिक टेस्ट, व्यूज वगैरह सभी कुछ सिमिलर थे, तो दोनों ने सोचा कि क्यों ना दोनों मिल करके ही जैम करें। थोड़ी स्ट्रगल जरूर फेस की थी इन्होंने शुरुआत में, लेकिन बच्चू भाई शाह जी ने एक भोजपुरी फिल्म बनाई थी दंगल, और ये फिल्म इन दोनों को मिली एज देयर फर्स्ट असाइनमेंट, और यही उनकी पहली गोल्डन जुबली हिट भी बनी। वैसे इनके म्यूजिक में एक कॉमन एसेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे, कुछ एक खास इंस्ट्रूमेंट जो कि हर कॉम्पोजिशन में यूज करते थे। कौन से थे ये इंस्ट्रूमेंट्स बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले चलिए सुनते हैं वो गाना जो कि भट्ट कैंप की एक लौती फिल्म थी जिसमें इमरान हाशमी और दिया मिर्जा ने साथ में काम किया। तुमसा नहीं देखा फिल्म से उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में अगला गाना। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ और नदीम जी श्रवण जी की जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से आपको आज मैं सुना रही हूं। साथ ही उनके कुछ हिट गाने भी आप सुन रहे हैं सारेगामा कारवा से। आई होप आपको आज की ये प्लेलिस्ट बेहद पसंद आ रही हो। नदीम श्रवण जी 90s के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक थे। उनके कॉम्पोजिशंस में स्ट्रांग हिंदुस्तानी म्यूजिक का फ्लेवर होता था। और जैसा कि मैं आपको कुछ देर पहले बता रही थी कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे जो ये अपने हर गाने में यूज करते थे, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स थे बांसुरी, सितार और शहनाई। बस बात ये थी कि वो इतने ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स को भी एक मॉडर्न वे में इस्तेमाल किया करते थे। उनकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो ओरिजिनल उनकी फील थी, इमोशंस जुड़े हुए थे जो इन इंस्ट्रूमेंट्स से, उन्हें ये जाने नहीं देते थे। उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा से ही यूनिक रहा है बॉलीवुड फिल्मों में। लेकिन उनके इंस्पिरेशन कौन थे बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले सुनते हैं उनकी फिल्म कसूर से अगला गाना, अलका याग्निक उदित नारायण जी की आवाज़ में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ और आज सुपर हिट म्यूजिक कंपोजर जोड़ी नदीम श्रवण जी के गाने आप सुन रहे हैं। 90s के जमाने में तो सिर्फ इन्हीं का म्यूजिक छाया हुआ था। वैसे नदीम जी और श्रवण जी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन अगर कोई थे तो वो नौशाद साहब थे। एस डी बर्मन जी को भी ये बहुत माना करते थे और शंकर जयकिशन जी का म्यूजिक भी इन्हें बेहद पसंद था। इनफैक्ट शंकर जयकिशन जी के म्यूजिक की झलक आपको नदीम श्रवण जी के म्यूजिक में भी कभी ना कभी दिख जाएगी। उनकी धुन में एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल और रोमांस हुआ करता था। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उनके कॉम्पोजिशन में एक सच्चाई हुआ करती थी। क्या आपको पता है, बचपन में नदीम जी के पेरेंट्स उन्हें मुंबई के एक रेस्टोरेंट में लेकर के जाया करते थे जहां पर अक्सर जयकिशन जी अपना म्यूजिक जो है वो परफॉर्म करते थे। जयकिशन जी पियानो बजाते थे, लड़कियां उनके आसपास झूमती थी, उनकी एक झलक के लिए पागल हो जाया करती थी। और वही सब देख करके नदीम जी को लगा कि उन्हें भी बड़े होकर के म्यूजिशियन ही बनना है। बहुत ही बढ़िया बात है कि बड़े होने के बाद में उन्होंने अपना ये सपना जो है वो बखूबी पूरा किया। चलिए और भी बातें करूंगी, लेकिन उसके पहले सुनाती हूँ आपको एक और एक सुपर हिट गाना नदीम श्रवण जी की जोड़ी का। सुनिए जरा।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ और नदीम जी श्रवण जी के गाने आज मैं आपको सुना रही हूं। आई होप आपको ये सभी गाने बेहद पसंद आ रहे हों। वैसे नदीम जी और श्रवण जी जोड़ी में तो म्यूजिक कंपोज करते ही थे, लेकिन इंडिविजुअली भी मूवीज के लिए कंपोज किया करते थे, जिसके कारण वक्त के साथ दोनों में थोड़ी बहुत खटास आ गई। साल 2005 में दोनों के रास्ते अलग हो गए। अक्षय कुमार, बॉबी देओल, लारा दत्ता और करीना कपूर की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दोस्ती। ये फिल्म उनकी आखिरी फिल्म थी एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट आयरनी ऑफ देयर लाइफ कि इनकी दोस्ती खत्म हुई दोस्ती फिल्म के म्यूजिक के साथ। नदीम जी ने अपना खुद का परफ्यूम का और बैग का बिजनेस खोल लिया और अब्रॉड शिफ्ट हो गए। उसी के साथ श्रवण जी का बॉलीवुड में काम करने का मन ही नहीं रहा और अपना सारा समय वो अपने बेटे संजीव दर्शन को म्यूजिकल ट्रेनिंग देने में और मूवी के प्रोडक्शन में बिताने लगे। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इन दोनों में कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को ही ये कॉम्पिटिशन मानने लगे थे। ऑल्सो इंडस्ट्री के जो क्रिटिक्स हैं उनका ये भी मानना है कि साल 2002 के बाद से इन दोनों की म्यूजिक की क्वालिटी भी जो थी वो थोड़ी सी बिगड़ने लगी थी, जिसके कारण इन दोनों को अवार्ड्स में बुलाना भी बंद कर दिया था, जिसके कारण इन दोनों को लगा कि अब अलग हो जाना ही दोनों के लिए ठीक है। खैर, मेरे हिसाब से म्यूजिक कभी नहीं मरता, उनके दिए हुए हिट्स आज भी हमारे जहन में बसे हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और गाने की ओर। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: घर सूर्य घर।
6: सुनो, आपने क्या सोच के मुझसे शादी की थी?
7: सोचने का तो टाइम ही नहीं मिला।
6: क्या मतलब?
7: अरे मतलब सोचने का टाइम ही नहीं मिला। जैसे ही तुम्हें देखा मैंने डिसाइड कर लिया शादी करनी है तो इसी से करनी। सोचने समझे में कोई और भी आके ले जाता तो।
6: हाँ जी,
7: तुम भी।

दोस्तों 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समां हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोते हो रेडियो गुंजन धर्मशाला, तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियों रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहनी सोहनी पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो कुंजन धर्मशाला तो ते मैं थोड़ी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदा ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम एंजॉय करते रहो पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला तू सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल तहे खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

श्रोताओ, रेडियो गुंजन धर्मशाला है ते तुसी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते बने होए हो। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। उम्मीद है पंजाबी गीतां दे इस प्रोग्राम च तुसी काफी इंजॉय कर रहे हो। तां हुण पेश कर रहे हां प्रोग्राम दा आखरी पंजाबी गीत।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: घर सूर्य घर।
6: सुनो, आपने क्या सोच के मुझसे शादी की थी?
7: सोचने का तो टाइम ही नहीं मिला।
6: क्या मतलब?
7: अरे मतलब सोचने का टाइम ही नहीं मिला। जैसे ही तुम्हें देखा मैंने डिसाइड कर लिया शादी करनी है तो इसी से करनी है। सोचने समझे में कोई और भी आके ले जाता तो
6: आ,
7: तुम भी ना।

0: नमस्ते नमस्कार 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ए है तुहां सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला ता श्रोताओं मैं शशि हाजिर होई हो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक। रोजाना तुहां सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम दा सफर जिहड़ा है से तुहां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। कने जिहड़ा जिंदगी दा सफर है से हां जो हमेशा कुछ ना कुछ जरूर जिहड़ा है से सिखाई करी जांदा है। अहंकार कने संस्कार च बड़ा ज़्यादा जिहड़ा फर्क है से नज़र आउंदा है से तुहां सारे जो ही पता है। अगर हां अपने अंदर अहंकार रखदे न कने अहंकार हां जो अगला जिहड़ा व्यक्ति है अगर हां झुकी करी जिहड़ा से अपनी गलबात रखदे न कने अहंकार जो साइड रखदे न कने अपने जिहड़ा संस्कार हैं तिना जो सामने रखदे न तो कुथी ना कुथी जिहड़ा हां दा अहंकार है कने जिहड़ा हां दे संस्कार हैं तिना च बड़ा ज़्यादा जिहड़ा फर्क है से हमेशा दिखने जो मिलता है। अहां दे जिहड़ा संस्कार हैं से अहां जो अच्छा जिहड़ा व्यक्ति है से बनाने दी जिहड़ा कोशिश है से करता है कने अहंकार जिहड़ा है से अहां जो अपनी जिंदगी च असफल होना या हमेशा अहंकार दी ओर चल दी ना तो कुछ ना कुछ अहंकार जिहड़ा है से अहां दी जिंदगी जो असीमित जिहड़ा है से जरूर करींदा है। तो श्रोताओं पहले श्रोता हाँ कन्ने जुड़ चुके हो ना करनी है हाँ तिना कन्ने गलबात कन्ने तुहां सारियां भी माटी दी मेह कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़िया ने। हेलो
1: हेलो नमस्ते सरसी जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हां जी हां ठीक ठाक है। तो बोला
0: जी यहां भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तुहां कुथु ते बोला दे कने तुहां दा नाम के है जी?
1: मैं टंगरोट का ते बोला रहा हूं रमेश मेरा नाम है
0: जी। रमेश जी क्या काम काज लग गया तुहां क्या करा दे आज?
1: कोई काम काज नहीं आज बिल ले जाने
0: जी बिल ले आना आज तुहां।
1: हां जी
0: जी ता रमेश जी तुहें क्या लगदा जिहड़ा हां दा अहंकार है कने संस्कार जिहड़ा ना हां दे तिना च कितना की फर्क जिहड़ा से तुहें जो दिखने जो मिलदा?
1: अहंकार बस कभी करना नहीं चाहिदा
0: जी।
1: अहंकार कदे कर की
0: जाए जी जी जी। जिहड़ा अहंकार है अगर हां अहंकार दी गल करिए या अपने जिहड़ा संस्कार हैं तिना दी गल करन तो कुछ ना कुछ जिहड़ा हां दे संस्कार हैं से हां जो ये सिखांदे न कि अगला जिहड़ा व्यक्ति है उस जो झुकी करी जिहड़ा से स्वीकार करना ना जी।
1: हां जी हां जी
0: जी। रमेश जी और नोईता जी तंगलोटिया दी
1: कोई नई ताजी नहीं आज लगे तुम्हें या जाए तो निकलना है क्या पता लगना डर गए पता कौन कौन दिख गया
0: जी जी जी ताज तो, जी
1: मोटी गेम मत ना
0: जी जी ताज तो हां कुंदिया गीत सुनना पसंद कर गए जी।
1: आज पूरे आज माता दी तो सुनाई दिया
0: जी। गुणे वाली माता दा भजन सुनना है तो हां
1: हां जी
0: जी जरूर। ये भजन तुहां तक पहुंचा दें जी चुनने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
1: ठीक है जी
0: जी। अगले जेड़ा श्रोता न सभी यहाँ कन्ने जुड़ चुके न तिना कन्ने भी करनी है गल बात कन्ने तिना ते भी पूछने से कुथों ते बोला दी कन्ने तिना दा ना क्या है। हेलो हेलो
2: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
2: नमस्ते मैडम जी।
0: जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
2: धन्यवाद मैडम जी। ठीक ठाक मैडम जी असा तुसा ठीक ठाक मैडम जी।
0: जी आहां भी ठीक ठाक है जी। तुहां कुतु ते बोला दे कने तुहां दा नां के है जी?
2: कोठिया जलोट ते बोले मैडम जी सुनील कुमार
0: जी। कोठिया जलोट ते सुनील जी बोला दे।
2: हां जी मैडम जी
0: जी। तो सुनील जी क्या हाल चाल है कोठिया जलोट वालियां दे?
2: बढ़िया मैडम जी
0: जी। क्या काम कार छेड़िया क्या करा दे?
2: कुछ नहीं मैडम जी तो हम दे प्रोग्राम सुना दे
0: जी। अच्छा प्रोग्राम सुना दे
2: जी मैडम जी
0: जीता तो है कदे लगता है प्रोग्राम माटी दी महक
2: बहुत अच्छा मैडम जी, बहुत अच्छा मैडम जी। मैं तो
0: जी।
2: धन्यवाद करना चाहता FM रेडियो गुंजन वालों जी, तेरा बढ़िया प्रोग्राम चला ही हो, अच्छे अच्छे गाने दिंदे तो। हाँ
0: जी
2: जी
0: जी धन्यवाद जी तुहदा भी, क्योंकि जितने भी श्रोता न से अगर इना कार्यक्रम जो प्यार दिन देना ताई
2: हाँ
0: जड़े
2: जी,
0: से
2: बस
0: हाँ जो
2: दिन
0: भी
2: रात आएंगे,
0: जी
2: चौगनी करा मैडम जी, तरक्की करा।
0: जी जी
2: जी जी मैडम जी, अच्छे
0: जी ता सुनील जी
2: अच्छे जान अच्छी
0: जी
2: अच्छी जानकारियां मिल रही मैडम जी। हाँ
0: जी
2: जी
0: जी ता अपने गांव दी कोई नई ताजी
2: बस मैडम बढ़िया, अज है जिला परिषद का कहना पंचायत समिति यानी जरा रिजल्ट निकलना अज। हाँ
0: जी,
2: जी
0: इंतजार है दीदा ना जी
2: हाँ जी हाँ जी मैडम जी,
0: जी इंतजार तो होता है ना जी। चलो हाँ अपना अधिकार अपना वोट कुसे दिन देना ता खुद जो भी अच्छा फील होता है ना जी
2: हाँ जी हाँ जी मैडम जी। चलो हाँ, वोट तो दे ही थी आपने मैडम जी, काम भी करना ना होना। हाँ
0: जी काम भी करना जरूरी है जी
2: जी हाँ जी मैडम जी,
0: जी क्योंकि अगर अहाँ कुछ अपना वोट दे देना कीमती वोट अहाँ कुछ दे देना तो अगला जेड़ा भी व्यक्ति है उस जो ये सोच रखना चाहिए कि काम कार चिरन से करना चाहिए ना जी
2: हाँ जी मैडम जी, इन्हें कि
0: समाज दा
2: पांच
0: जी
2: हाँ जी हाँ जी,
0: जी
2: इन्हें कि मतलब चूनी चेक ना बेईरान फिर
0: जी
2: है,
0: जी
2: ना कुछ दे काम ना काज दे फिर है, क्या फायदा मैडम जी।
0: जी समाज दा
2: बंदा था
0: सुधार ताई हो सकदा जी
2: बंदा मैडम जी काम कर रहा ना, ताई बंदा फिर है, जनता भी फिर बार बार चुननी दी।
0: जी ये भी सही गल
2: हाँ
0: बोली तुहां कि
2: जी
0: अगर अगला जेड़ा व्यक्ति है जेड़ा भी उम्मीदवार है अगर से अच्छा काम करता है तो जनता भी तिसे दोबारा जेड़े से जरूर बनांदी
2: हाँ
0: है
2: जी
0: ना
2: हाँ
0: उम्मीदवार
2: जी हाँ जी मैडम जी हाँ
0: जी। तो
2: जी,
0: सुनील जी आज तुहां कुंदिया गीत जेड़े से सुनना पसंद करके
2: आज मैडम जी तो अपनी पसंदा सुनाई ने, बढ़िया था गीत। हाँ
0: जी। अच्छा मेरी पसंदीदा गीत सुनना है आज
2: जी
0: तुहां
2: मैडम जी, डेली तो हाँ सुन रही अपनी पसंद, आज तो पसंद सुनना है।
0: जी जी जरूर जी मेरी पसंदीदा जेड़ा गीत है से तुहां तक पहुंचान दें जी। जुड़ने वास्ते
2: धन्यवाद
0: बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा
2: मैडम जी, नमस्ते मैडम
0: जी।
2: जी।
0: ये है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अगले जेड़ा श्रोता न सभी यहां जो कॉल करा देना तिना दी कॉल भी जरूर चुक देना कने तिना कने गालबात जेड़े से जरूर कर देना। हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी। हाँ
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहंदा बड़ा बड़ा रेडियो गुंजन धर्मशाला च
1: और ठीक ठाक है मैं। हाँ
0: जी। हाँ बिल्कुल ठीक ठाक इन जी तुह ठीक ठाक है न
1: जी सब ठीक ठाक जी। हाँ
0: जी। तुह कुछ ते बोला दे कने तुहंदा ना के जी
1: मैं दाढ़ी से बोला था, तारा चंद जी। हाँ
0: जी दाढ़ी ते बोला दे तारा चंद
1: जी हाँ जी,
0: जी। ता तारा चंद जी तो हाँ क्या काम काल गए या क्या करा दे आज
1: हाँ दुकानदार बैठे हो कने थोड़ी गल्ला सुना दे।
0: जी। ता मेरी गल्ला सुना दे ता क्या तो हाँ जो मेरी गल्ला च खास गल जड़े से लगी
1: गल खास बोतां दी गल्लां चलियां, कोई हुण जिहड़े दंद जित गए है, काम कर गए, तां उहदा इही है।
0: जी
1: हां
0: जी
1: जी
0: जी
1: हां जी
0: जी
1: मैडम,
0: कनेसी कन्ने अहाँ थोड़ी देर गलबात भी की थी कि अहाँ दे जेड़ा संस्कार है या अहाँ अहंकार जेड़ा है से अहाँ जो अपनी जिंदगी च सफल नहीं होना दिंदा ना जी
1: हाँ जी हाँ जी
0: कन्ने संस्कार जेड़ा न से अहाँ जो हमेशा अच्छी जेड़ा शिक्षा है सभी जरूर दिंदा है या बड़े ने गल किस प्रकार करनी है या अपना मान सम्मान एक दुए कन्ने किन्ना रखना है ना जी
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जी ता तुहें क्या लगता जेड़ा अहां दे संस्कार हैं से अहां दी जिंदगी च कितने मायने रख दे
1: सबसे पहले जी संस्कार अच्छे होंगे तो अगर कामकार भी अच्छे होने, गलबात भी अच्छी होनी, ठीक है
0: जी
1: ना जी। संस्कार
0: जी
1: ही खराब हुए तो फिर तो सब कुछ खराब ही है, संस्कार
0: जी
1: पहले भी अच्छे होने चाहिए।
0: जी ये तो तुहां सही बोलिया कि संस्कार जेड़ा से अहां दे अच्छे होना चाहिए ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: अहां दा
1: बिल्कुल
0: जेड़ा व्यवहार है या अहां दा जेड़ा बोल चाल है से बिल्कुल अच्छा होना जरूरी है ना जी
1: हाँ जी, सब जने प्यारे ने गल करो,
0: जी
1: सियाना ज्याणा सब दिखना चाहिए।
0: जी
1: ਵਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ
0: ਜੀ ਜੀ जी। वैसे तो बोलने वास्ते छोटा दिया लफ्ज है ना कि व्यवहार, पर अगर हाँ थोड़ा दिया इस लफ्ज पर गौर करन, ध्याने ने सोच विचार करन, हर कोई जनता जड़े से यही सोचती है कि जेड़ा अगला व्यक्ति है उसका जेड़ा व्यवहार है या बोल चाल किस प्रकार है ना जी।
1: एक ही ना दिखा ना, एक इंसान का जेडी इस शरीर है एक दुकान है
0: जी जी,
1: है ना, सही को ये मुंह जेड़ा है ताला है
0: जी जी,
1: इंसान ठीक लग जा लो है ताला खुद है ना, चाहे दुकान ना तब पता लगता अंदर सोना रखे कि क्वाड रखे
0: जी जी,
1: नहीं तो जब दीवार पर डिपेंड कर दीवार अच्छा होगा तो गल भी अच्छी जानी सब कुछ ठीक होगा जी, नहीं यही है
0: जी। अगर हाथीसा दुकान दे ताले दी चाबी खोल ली देन ता हां जो समझ जोंदे कि नहीं इस अंदर क्या है ना जी।
1: हां जी अच्छी गल करके बोलना, सोने दी दुकान है अच्छी है
0: जी जी,
1: कने जे से ओदे गल करे ते कुसी दा दिल दुखी करता हो ना, एक बार तक वाले दुकान
0: जी जी
1: जी
0: जी। चलो बड़ी अच्छी गल तो हां बोली, कने जितने भी श्रोता है ना से जरूर गलबात भी सुना दे उन्हें ना, कने अपना जेड़ा व्यवहार है से जरूर अच्छा रखा, प्यार भावना एक दूसरे अंदर रखा ना जी। जी तो आज तो हाँ गुंदिया गीत सुनना पसंद करगी,
1: आज तो हाँ गीत सुनाए गया जी, अगली सीता बाबा जी बहन दे पिछली पिछली सीता संगत सारी
0: जी, रंग बिरंगा जहाज सुनने जी तो
1: रंग बिरंगा जहाज बनाया
0: जरूर ये भजन तो तक पहुंचा दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हंदा जी। श्रोताओं अहां भी कर दें अपने कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीत करने, तो हां सारे भी इस गीत जो इंजॉय करा, कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

दर्शुताओं तुह सारे सुनिया अड़िया अड़िया दर्शुताओं तुह सारे दिया भी जेड़ा अड़िया न तिना जो जरूर पूरा करा जेड़ा भी तुहंदे शौक हैं तिना जो जरूर पूरा पूरा करा क्योंकि हर कुसी दे अपने अपने जेड़ा शौक हैं से होंदे न कन्ने जलो हाँ जिंदगी दे सफर जो बेहतर बनाना चाहते न तो अपने जेड़ा शौक जेड़ा तिना जो पूरा करना भी अहां वास्ते जरूरी है। इसी कन्ने अहां जेड़ा कार्यक्रम च गल बात करा देना से करा देना कि अहंकार कन्ने संस्कार च जेड़ा से बड़ा ज़्यादा फर्क है अगर अहां समझते न कन्ने आज कने दिने दी अहां गल करिए ता 31 मई 2026 दी इस संडे दा दिन तुहां फुलोन इंजॉय करा दे होने न अपनी जेड़ा छुट्टी आला दिन है सभी जरूर इंजॉय करा दे होने न कन्ने अपना माटी दी मेह कार्यक्रम भी इंजॉय जेड़े से करा दे होने न तो अहंकार अहां हमेशा ये सोचते न कि अहंकार जेड़े से अहां दी ताकत है पर संस्कार जेड़न से अहां जो बड़ा कुछ सिखाई करी जानते न अगर अहां अपने अंदर अच्छे संस्कार रख देन अच्छा व्यवहार रख देन तो कुथी ना कुथी से अहां जो जेड़ा अगला व्यक्ति है उसका मान सम्मान किस प्रकार करना है चाहे से बड़े न चाहे से छोटे न अहां दे जेड़ा संस्कार है से अहां जो ये सिखाई करी जानते न कि बड़ियां दा जेड़ा सम्मान है से किस प्रकार करना है कने प्रेम कने विश्वास जेड़े से भी अहां दे संस्कार अहां जो सिखांदे न इसी कने झुकने दा जेड़ा नज़रिया है अहां दे जेड़ा संस्कार हैं से अहां जो झुकने दा जेड़ा नज़रिया है से जरूर दिंदे न कने अगर अहां हमेशा अपने अंदर अहंकार रखते न या अच्छा जेड़ा बोलचाल नहीं रखते न तो कुथी ना कुथी से अहां दी जिंदगी पर प्रभाव जेड़ा से जरूर करते हैं तो इन चीज़ों का जेड़ा ध्यान है से रखना भी अहां वास्ते जरूरी है। तो तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ी सकते कन्ने अहां कन्ने गलबात जेड़ा से जरूर करी सकते तो इसी कन्ने हाँ अगे बढ़ते न कन्ने जेड़ा पहली फरमाइश तुह तक पहुँचाते न तो तुह सारे भी इस प्यारे दे भजन जो इंजॉय करा कने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

आंबोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तुहा सारे सुनिया ए गीत ए भजन। इस भजन दी फरमाई शाह जो आयु वे तंगलोटिया ते कने तिना दा ना वे रमेश जी तिना तक कहा ए भजन पहुंचाया कने तुहा सारिया भी इंजॉय कीता। फिर तहां वापिस जड़े से अपनी गलबात उपर आईयो न कने समय दी ओर अगर अहां अपना जड़ा ध्यान है या अपनी जड़ा नज़र है से लगा न तो 2:27 जड़ा से कार्यक्रम दे सफर जो या न तो इसी कने हाँ फिर ते अपनी जड़ा गल बात है से शुरू कर दे न तो शुद्ध खुशी दा जड़ा आधार है खुशी दा जड़ा आधार है से ये है कि यहाँ दे जड़ा संस्कार है से अहाँ जो हमेशा ये सिखाते हैं कि अगला जिहड़ा व्यक्ति है से अगर सफलता की ओर जाता है तो अहाँ जो खुशी जिहड़ा है से महसूस होती है कने अगर अहाँ अहंकार अपने अंदर रखते हैं ना कुछ अहाँ जिहड़ा अगला व्यक्ति है उस जो छोटा जिहड़ा है से जरूर समझते हैं पर हमेशा अच्छे संस्कार अच्छा जिहड़ा व्यवहार है से रखा। इसी कन्ने जिहड़ा रिश्ते न रिश्तियां पर जिहड़ा असर है सभी जरूर जिहड़े से दिखने जो मिलता है। अहंकार जिहड़े से अगर अहां रिश्ते अंदर रख दे न तो से अहां दे जितने भी रिश्ते न तिना जो तोड़ी दे कन्ने अगर अहां अपने जिहड़ा संस्कार हैं तिना जो अपने अंदर रख दे न या अगला जिहड़ा व्यक्ति है अपने अंदर संस्कार अच्छे संस्कार रखता है तो कुछ ना कुछ से अपने जड़ा टूटने वाले रिश्ते न तिना जो बचाई करी रखता है पर से यहाँ पर निर्भर करता है कि यहाँ किस प्रकार अहंकार पर ज़्यादा ध्यान दिन देना कि अपने संस्कारा पर दिन देना कि यहाँ क्या जड़ा सोच विचार अपने अंदर रख देना। हर व्यक्ति दी अपनी अपनी सोच है अहाँ क्या सोचा देन क्या अहाँ अपनी जुबान कन्ने बोला देन क्योंकि अगर अहाँ अपनी जुबान ते अच्छा बोल देन अच्छे शब्द जड़ा न से अगले व्यक्ति जो बोल देन तो कुछ ना कुछ प्यार भावना जड़े से रिश्तियां च जड़ा मिठास है से अहाँ जो दिखने जो मिलती है कने हमेशा अगर अहाँ गुस्सा या अहंकार खुद अंदर रख देन तो से रिश्ते जड़ा से बिल्कुल टूटी जाते हैं। कने पहचान दा जरिया अगर अहाँ चलो अहाँ दे जड़ा संस्कार हैं से अहाँ जो शांत किन्ना रहने से भी जरूर सिखाते हैं तो अपने जड़ा संस्कार हैं से हमेशा अच्छे रखा। माता पिता तो अपने बच्चों जो अच्छे संस्कार दें देन जालू बच्चा छोटा होंदा तालू ते ही माता पिता जिहड़े से शुरू हो जांदे। अगर छोटा बच्चा कोई गलती करा दा है तो बच्चे जो जिहड़ा माता पिता न से जरूर टोक देन कि नहीं अगर से कुछ भी गलत बोला दा है तो माता पिता उस जो हमेशा टोक देन तो माता पिता दा जिहड़ा बच्चे दी जिंदगी च बड़ा अहम रोल जिहड़ा से रहिंदा है तो तुहां भी जितने भी पेरेंट्स हैं से अपने बच्चों जो अच्छे संस्कार देन अच्छा जिहड़ा व्यवहार है से जरूर देन कने बच्चों ते भी अहाँ ही चाहते न कि सभी अपने माता पिता दा जिहड़ा मान सम्मान है से जरूर करन तिना दी रिस्पेक्ट जिहड़ा है से जरूर करन चाहे से बड़े न चाहे से छोटे न चाहे तिना दे दादा दादी हैं या कोई भी बुजुर्ग है तिना दा हमेशा मान सम्मान जरूर करन। इसी कन्ने अहाँ थोड़ा दी आगे बढ़ते न अपनी गलबात जो फिर ते इतों ही रोक देन कने तुहां जो ले चल देन फरमाइश दी ओर तुहांदा सारे दा भी मन जिहड़ा से जरूर करा दा होना है कि अहाँ जो फरमाइश दी ओर जिहड़ा से जरूर ले करी जान अहाँ जो भी जिहड़ा याद है से जरूर रहिंदा है कि अहाँ दे जिहड़ा श्रोता न से अहाँ जो बार बार ध्यान जिहड़ा से जरूर दिलांदे न कि अहाँ दी या तुहां दी जिहड़ा फरमाइश है से अहाँ तुहां तक जल्दी जल्दी पहुँचान कने जिहड़ा तुहां दी चेहरे दी स्माइल है से बिल्कुल फीकी ना पोए तो चलदे न सुनदे न ये प्यारी दी फरमाइश तुहां सारे भी जरूर इंजॉय करा।
इस गीत की फरमाइश अह जो आयु वे कोठियां जलोट ते कने तिना दा नाँ वे सुनील कुमार जी तिना सुनने मेरी पसंद का गीत तिना तक कहाँ ये गीत पहुँचा देना तुह सारे भी इंजॉय करा।

0: दर्शकों तो सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश इसे ही फरमाइश करने हाँ फिर दी वापिस आई हूँ तुह तक गलबात करना गलबात हाँ क्या करा दी जरूर तुह सुना दे उन्हें न कने जेड़ा गीत संगीत जेड़ा फरमाइशा न तिना जो भी जरूर इंजॉय जेड़े से तुह करा दे उन्हें अगले जेड़ा श्रोता न पहले कर दिन तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी
1: मैडम जी
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुह दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न। हेलो
1: हेलो हाँ जी मैडम जी
0: ठीक ठाक है जी
1: ठीक ठाक जी तुम सुना
0: जी यहाँ भी ठीक ठाक है जी तुह कुथुते बोला दे कने तुह दा ना के है जी
1: रकड़े ते बोलो ईशा
0: जी ईशा जी क्या करा दे तुह क्या हाल चाल है रकड़ आले दे
1: बस ठीक मैडम जी
0: जी ठीक ही चाहिए ना जी
1: हाँ जी
0: जी ता आज तुह गुंडिया गीत जेड़े से सुनना पसंद करके
1: गुणाली माता का जत्था
0: जी कुंडिया
1: गुणाली माता का भजन
0: जी गुणाली माता का भजन जेड़े से हाँ एक बारी प्ले करी त्या कोई और फरमाइश तो हाँ जरूर जेड़े से करी सकते ना जी
1: नागे सुनाई
0: जी जरूर तो हम दी जेड़ा फरमाइश है से तो हाँ तक पहुँचान दें जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हाँ दा
1: धन्यवाद
0: जी तशु तो गलबात हाँ करा दे थे कि खुद कने बच्चों जो अच्छे जड़ा संस्कार हैं से किन्ना विकसित जड़े से यहाँ करने कने अहंकार कने जड़ा संस्कार हैं तिना च कितना ज़्यादा फर्क है खुद अंदर सही संस्कार विकसित जड़े से यहाँ किस प्रकार जड़े से करी सकते आत्म निरीक्षण अगर अहाँ रोज सोने ते पहले अपना जड़ा रोजमर्रा दी जिंदगी है या अपना जड़ा व्यवहार है उस जो रोज दिख देना कि अहाँ किस प्रकार अपना पूरे दिने च व्यवहार रखिया या किस प्रकार अहाँ जड़े से अहंकार अपने अंदर हावी होना दिता या किस प्रकार अहाँ समझदारी जड़े से दिखाई या अपने संस्कार अहाँ किस प्रकार जड़े से रखे सहानुभूति अगर अहाँ खुद कने अच्छा सोच विचार रखते न या सकारात्मक सोच कने अहाँ अगे बढ़ते न अगले व्यक्ति कने अच्छा जेड़ा व्यवहार है से रखते न तो सभी अहाँ दे संस्कार ही हैं से अहाँ जो सिखाते न कि किस प्रकार अपना जेड़ा सोच है या अपना जेड़ा गुस्सा है से कम करना है कने अपनी जेड़ा गलतियाँ न तिना जो स्वीकार करना अगर हाँ अपनी गलतियाँ जो स्वीकार करते न कने हाँ अगर किसी जो गलत भी बोला दे न कने या गलतियाँ ने हाँ किसी जो कुछ गलत बोला दे न तो ज़रूर अपनी जेड़ा गलती है उस जो स्वीकार जड़े से ज़रूर करा तो ये यहाँ दे संस्कार हैं ये यहाँ जो सिखाते न कि अपनी जिंदगी च अगे किस प्रकार जड़े से बढ़ना है अहाँ दी जड़ा संगत संगत पर ध्यान देना भी अहाँ वास्ते जरूरी है संगत ऐसे जड़ा व्यक्ति हैं तिना दी रखा जिन्हें च सकारात्मक सोच जड़े से तो जो दिखने जो मिलती है या ईमानदार या दूसरों का मान सम्मान करने वाला व्यक्ति है तो ज़रूर तिना दी संगत जड़े से रखा कई बार होंगे ना कि सोच सोच पर भी जड़ा फर्क है से जरूर पौंदा है कने अहाँ अगर अहाँ बुरा बोला दे कने अगला जड़ा व्यक्ति है से अच्छा बोला दा तो हाँ उसकी सोच पर भी जड़े से थोड़ा देर सोच विचार कर देने कि नहीं ये व्यक्ति जड़े से अच्छा बोला दा तो फिर यहाँ का जो बुरा जड़े से विचार अपने अंदर रखा दे तो सोच सोच पर भी जड़े से यहाँ जो ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ा दी अगे बढ़ते न कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते न तो सारे भी ऐसा फरमाइशा जो इंजॉय करा कने नहीं सुनते रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये तुहा सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहा सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कहने तुहा सारे सुनिया ये प्यारा दिया भजन। इस भजन की फरमाइश अह जो आई हुए दाड़ी ते कने तिना दा नावे तारा चंद तिना तक अहाँ ये भजन पहुँचाया कने तुहा सारिया भी इंजॉय किया। अजकने दौर दी अहाँ गल करिए डिजिटल युग दी संस्कारां दी अहां गल करना तो कुथी ना कुथी बच्चे जिहड़ा न ज़्यादातर सोशल मीडिया पर अपना समय जिहड़ा से दे देन या बच्चे जिहड़ा न अपने संस्कार जिहड़ा न से बिल्कुल

भूल ही चुके हो। सही सोचा दी कि मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया ही यहाँ वास्ते सब कुछ है। गुस्से पर काबू करना, अहंकार पर काबू करना से बच्चे जो सिखाना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हाँ गल बात करना बच्चों की, तो ज़्यादातर पेरेंट्स अगर अपने बच्चों जो अच्छे वास्ते बोलते हैं तो कुछ ना कुछ बच्चे जड़ा न से जल्दी गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं कि यहाँ दे जड़ा पेरेंट्स हैं से यहाँ जो कहे बोला दे या यहाँ दे बारे च बुरा जड़ा से सोचा दे। पर तुहां भी थोड़ा दिया सोची करी दिखा ना, पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों वास्ते बुरा जड़ा से नहीं सोचते, से हमेशा अपने बच्चों वास्ते अच्छा सोचते हैं कि बच्चे जड़ा न से सफलता की ओर जान, अपना जड़ा जिंदगी का सफ़र है उस जो और भी बेहतर जड़ा से ज़रूर बनान। बेहतर ताई बनना है जालू तुहां थोड़ा दिया अपनी जिंदगी दे सफ़र जो समझ देन या अपने माता पिता दी जेड़ा गल बात है उस जो समझ देन सुन देन या तिना गल्ला बाता पर गौर कर देन, तो ज़रूर तुहां अपने अंदर अच्छा जेड़ा व्यवहार है से ज़रूर रख देन। गुस्सा तो पल भर वास्ते होंदा, कने नुकसान अहां जो पूरी उम्र दे करी जांदा, तो गुस्से पर कंट्रोल करना तुहां दा काम है। अगर तुहां गुस्से जो कंट्रोल करी लैंदे ना तो बड़ी अच्छी गल है, तो तुहां अपने जीवन जो और भी प्रेम भाव कन्ने भरींदे ना, तो अपने जीवन जो हमेशा प्रेम भाव कन्ने भरा कन्ने अपनी जेड़ा पेरेंट्स आन तिना दा हमेशा मान सम्मान जरूर करा। थोड़ा दिया फिर ते अगे बढ़ते न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचा देन। अगली फरमाइश अहां जो आई हुए रकड़ ते कने तिना दा ना वे, हुण तुहां सोचा दे होने ने कि तिना दा ना क्या है। अगर तुहां कार्यक्रम सुना दे होने न ता तुहां जरूर सुनी लिया कने फिर भी अहां तुहां तक पहुँचाई देन कि ये फरमाइश अहां जो आई हुए ईशा जी दी। ईशा जी तक अहां ये भजन पहुँचा देन, तुहां सारे भी इस भजन जो इंजॉय करा।

0: ये तुहां सारेंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तशु तो थोड़ी दी गल अपने स्वास्थ्य दे ऊपर भी कर देना कि अपने सेहत का ख्याल रखना भी हम वास्ते कितना ज़्यादा जरूरी है। सेहत का ख्याल रख के ताई तहां दा जिहड़ा जिंदगी दा सफ़र है से और बेहतर लगना। हुण तुहां सोचा दे होणे ना कि जिंदगी दा सफ़र बेहतर तो हमेशा रहता है पर थोड़ा जहा भी यहाँ की सेहत पर कुछ नुकसान हो जाता है तो हाँ जो जिंदगी का जिहड़ा सफ़र है से थोड़ा जहा अधूरा जहा लगता है। जलू सेहत ठीक है तो सारे ही काम अहां वास्ते ठीक हैं। तशु तो खाली पेट कढ़ी पत्ता अगर तुहां खांदे न तो इसके बड़े सारे जिहड़ा फायदे न से दिखने जो मिलते हैं। दिन भर जिहड़ा एनर्जी है से भरपूर मात्रा चाह जो मिलती है तो कड़ी पत्ता जिहड़ा से अहां वास्ते कितना ज़्यादा जरूरी है से तो हाँ सारे जो ही पता है। कहने वैसे भी ज़्यादातर अहां सब्जी च भी कड़ी पत्ते का जिहड़ा यूज़ है से जरूर कर देन। कहने अगले जिहड़ा श्रोता है ना तिना कहने कर देन गलबात। हैलो
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हां जी जी ठीक ठाक है। तुहां ठीक ठाक
0: जी? जी यहां भी ठीक ठाक है जी। तुहां कुथों ते बोला दे कने तुहांदा ना के है जी?
1: मैं राज बोला खनेरे ते
0: जी। राज जी समय जड़ा से यहां थोड़ा दिया कार्यक्रम च तो जरूर तुहां अपनी पसंद दा जड़ा गीत है से जरूर दसी देन जी।
1: मैडम जी गाना सुनना है जिंदगी सोनी है सिकरे
0: जी। अच्छा गाना सुनना है तुहां जिंदगी सोनी जी। खनियारे आ रहे हैं जी, क्या हाल चाल है जी?
1: बहुत बढ़िया मैडम जी, बहुत बढ़िया
0: जी। बढ़िया ही चाहिए ना जी? जी जरूर तुहां दी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते धन्यवाद जी।
1: धन्यवाद धन्यवाद। दिल लाके
0: छड़िए तो श्रोताओं सुनते नहीं सा प्यारी दिया फरमाइशा जो

पैसों तो तुह सारे सोना देसा प्यारी दिया फरमाइशक जो कने तुह सारे जे पता है कि इस कार्यक्रम दा जिहड़ा समय है से तुह तक रहंदा है 2-3 बजे तक। तो इस कार्यक्रम दा जिहड़ा समय है से इत्थों ही संपन्न हुंदा है। कने समय भी यहाँ जो जिहड़ा इशारे है से जरूर करा दा कि हुण तुह अनुमति ले लिया अनुमति यहाँ लेंदे ने कने अपनी जिंदगी जो सोना बना कने हमेशा अपना जिहड़ा ख्याल है से जरूर रखा कने अपने दा ख्याल भी जरूर रखा।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex Plus Point।

0: ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: घर सूर्य घर।
6: सुनो, आपने क्या सोच के मुझसे शादी की थी?
7: सोचने का तो टाइम ही नहीं मिला।
6: क्या मतलब?
7: अरे मतलब सोचने का टाइम ही नहीं मिला। जैसे ही तुम्हें देखा मैंने डिसाइड कर लिया शादी करनी है तो इसी से कर। सोचने समझे में कोई और भी आके ले जाता तो।
6: आ,
7: तुम भी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: घर सूर्य घर।
6: सुनो, आपने क्या सोच के मुझसे शादी की थी?
7: सोचने का तो टाइम ही नहीं मिला।
6: क्या मतलब?
7: मतलब सोचने का टाइम ही नहीं मिला। जैसी तुम्हें देखा मैंने डिसाइड कर लिया, शादी करनी है तो इसी से करनी। सोचने समझे में कोई और भी आके ले जाता तो।
6: हाँ जी,
7: तुम भी।

0: नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा हूँ। सचिन कपूर हाजिर बुझे को कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा लेकर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। तो बिल्कुल आज तो आ रहा और यह तुसोगी मौजूद हैं बिल्कुल लाइव, तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं। और आज बिल्कुल बीजेपी री के सो जीत हुए 17 में से 11 सीटें के सो बीजेपी री आई ने, तो जो विधायक हैं श्री सुधीर शर्मा जी तीनों भी मुबारक हूँ, और जितने भी इंदे पार्षद आए हैं 11 रे 11 पार्षद जो भी मुबारक हूँ, और जो इंदे कांग्रेस रे 5 आए ने तीनों भी किया सो बहुत बहुत मुबारक हूँ वेड़ी गुंजन धर्मशाला री औरतों। और उम्मीद है या कि अभी तो है 17 रे 17 जो इंदे पार्षद हैं सो भरपूर मेहनत कर और इस धर्मशाला जो किया सो वाकई में ही किया सो स्मार्ट बनान है ना, और अपने अपने वार्ड में किया सो बेहतरीन काम करन, अपने मनु जो किया सो निराश ना करन, और जड़ी जड़ी भी जो भी पंचायत रहे प्रधान चुनी करे आए, पंचायत रहे प्रधान चुनी करे आए, पंच चुनी करे आए ने BDC ने, तो सब भी किया सो मेहनत ज़रूर करन, क्योंकि मेहनत रहा फल किया सो मिठा ज़रूर बुंदा हाशतों, और मेहनत हमेशा कर दे किया सो रहना चाहिए। हाँ बहरहाल इंदे पहले श्रोता सोगे कनेक्टेड हैं पुछ दिन कौन बल्लू देन और कड़ी थो बल्लू देन, पर तो सब श्रोता भी सोगे कनेक्ट पूछ सकते हैं श्रोताओं 7018 8807 09 पर आइए कार्यक्रम जो आगू बढ़ेंदेन अक मुख्य फिर आऊँ दसना चाहता 7018 8807 09 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो हो नहीं सकते अपने क्षेत्र की जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं। बहरहाल आइए श्रोता जो कर दिन कनेक्ट। नमस्ते जी।
1: नमस्ते सर जी। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते, ठीक ठाक न?
1: हाँ जी सर जी, ठीक ठाक जी।
0: और कर कर लग रहे कैलूर कमाना?
1: कुछ नहीं सर, बैठी हो बस तो दे प्रोग्राम सुना दे।
0: अच्छा, और तबीयत ठीक है तुम दे?
1: हाँ जी सर जी, ठीक है।
0: चलो कदे गो आज का दिन,
1: जो दिन प्रभु की कृपा दे निकलिया सर जी वो ही बढ़िया है।
0: बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल
1: जी सर।
0: और तो है सच में बड़े बहुत प्यारे और अच्छे इंसान हैं, और वाकई में मतलब तो हमेशा मुस्कुरंदे रहते हैं इस कंडीशन में भी, इस जो बुरा समय तो सोगी चल रही थी माँ भी, तो वाकई में बा कमाल इन कमाल इन तो
1: सर। हाँ जी सर जी, हाँ जी
0: हाँ जी।
1: बाकी तो भी बिल्कुल अच्छे ने सर जी, ऐसी मजाक कर लेंगे उसी बारी तो भी।
0: चलिए जी, इंसान दी जिंदगी च अगर है छूरे ना था सो इंसान है के जो दुए जो ना समझाओ दुए हंसाई ना पा है ना, असली इंसान तो सो है जो दूजे जो हंसाई सकता है।
1: जी, जी,
0: कुछ
1: जी,
0: भी बवा अपनी अपनी दिक्कत हर किसी बंदे है ना जी,
1: जी।
0: लेकिन इंसान सो ही बेहतर है जो अपने गम जो अंदर छुपाई लिया और बाहर मुस्कुरंदा रहा।
1: हाँ जी सर जी।
0: जी जनाब कुंडन गीत सुनना पसंद कर ले?
1: अज सर जी, अज तो अपनी पसंद का कोई गदियाली सॉन्ग सुनाई ने मिंजो।
0: गदियाली गीत कोई भी हुन लेना तुसु?
1: हाँ जी, तो अपनी पसंद सुनाई ने अज
0: मेरी पसंद दा। चलो एक भजन है, 10 भजन होने देना है ना जी।
1: हाँ जी,
0: चलिए ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद और खुश रहन तो है तंदुरुस्त रहन।
1: धन्यवाद सर जी, नमस्कार।
0: और एक सवाल तो की जो तुम चांसेस हैं थोड़ा तो है बेहतर बुझ सका तुस होगे बेहतर ठीक बुझगान तो है। हेलो, माफ़ करें दे श्रोता गण सो डिसकनेक्ट बुझ गया हैं, पर चलो श्रोता इंसान इंसान सो गिना बहुत कुछ बुझेगा, और जिन्हों गिना बंदा ने सो सो इंसान आई थिंक पीड़ा ना समझ सकते, सो इंसान आई थिंक तस इन्वायरमेंट जो ना सोच सकते ना ही समझ सकते, अरे मनो छोटी छोटी गल्ला भी छू गया सो गोल देन पलचिन देन बीड़ा पिछो जमीना पिछो है घर रे कला कलेश पिछो छोट छोटी गल्ला पिछु लेकिन सो कोई मायने ना रख दी, वाकई में सो कोई मायने रख दी क्योंकि तो अगर अकी दू अंडरस्टूड ना करी सकूंदा अंडरस्टैंड ना करी सकूंदा तो टाइम इंदा कि इंसान फिर सोचता कि यार लीव इट लेकिन वाकई में सो कोई गल्ला ना होंगी कि जमीन तुस सोगे असु सोगे ना लेकर गाने अशो तो है ना बीड़ा असु सोगे ना लेकर गाने घर असु सोगे ना लेकर गाना ए अगर है करखा चलो जॉब कर दे सो तो अलग अलग लेकिन घर भी अगर है घर भी अगर है तस हिसाब हो गए इवन देन या बड़ा ही वो कर दिन तो असू कुछ भी सौगी तरह लेकर गाना जो मूवमेंट भगवान ने भी दिया था तो वो खरा दी तुरो अच्छा दी तुरो तस मूवमेंट जो जीना किया सो सतबुद्धि वाला काम बुंदा तस मूवमेंट जो तो है कैच करा तस मूवमेंट जो तो है इंजॉय करा बाकी स्थिर कुछ भी नहीं है दुनिया मंच स्थाई कुछ भी नहीं है दुनिया मंच हो तो ये सब बदलिंदा रहना कोई पता नहीं वक्त रहा कहना कसेरा पहिया कि ना करे पलटी कच्छा है ना सो हर मूवमेंट जो इंजॉय करा रेडियो गुंजन जो फिलहाल इंजॉय करा इन द अगले शो था अस होगी कनेक्टेड हिन नमस्ते जी हेलो
2: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते नमस्कार जी नमस्कार
2: नमस्ते जी मैं साक्षी बोल रही
0: हूँ हाँ जी साक्षी जी ठीक ठाक ना
2: हाँ जी
0: करे लो ग्रुप
2: कुछ नहीं बैठे हैं
0: अच्छा हम भी ठीक है जी हम भी ठीक ठाक या फिलहाल तो साक्षी जी कौन दिन गीत होना तुसु
2: ये गाने की आवाज में शिव जी का गाना सुनाओ
0: शिव जी का गाना
2: हाँ जी
0: चलिए ठीक है जी जरूर होने ले
2: धन्यवाद आपका
0: धन्यवाद जी श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम सचिन कपूर शो के बिल्कुल लाइव होने कर देना अपने अपने रेडियो सेट में रेडियो गुंजन धर्मशाला मंच श्रोतागण बिल्कुल फरमाइशा करो कर देन कहो कि लाइव कार्यक्रम में तो फरमाइशा तो बनती ही है ना फरमाइशा है ज़रूर पूरी भी कर लें श्रोतो लेकिन मेरा पसंदीदा गीत बल्लो आ ताइया जी आगाज कर लेंदे इस गीता सोगी फिलहाल श्रोताओं हाँ तो हमेशा ही कहना चाहता है जो इन श्रोता थी जो पहले कॉलर थी इन सो कॉलर के थी सो थोड़े करे फिजिकली ठीक नहीं काफ़ी साल था कह सो बेड पर हिन और फिर भी रोज़ाना अस होगी कनेक्ट बुंदे रोज़ाना हज़ारा मणु होगी लख मणु होगी कि असो कनेक्ट बुंदे इंतजार रहा चूर बजेरा और इं गल बल्ले कि तो एहसाए भी लेंदे कदी कदी तो हम शुक्रिया अदा करनो कि हम तुस हसाई सकूंदा है ना बहुत सारे गम ने जिंदगी में सब भी उन शायद मुझो भी बहुत गम मेरे अंदर बहुत गम है शायद तुस होगी ना बयान करी सकूँ तुंदे अंदर बहुत गम होना तुसे भी कसी होगी और योग्य किया सो बयान ना करी सकते हैं लेकिन मुझे ये लगता कि इंदा गम यारे गम्मा हो गया सो कुछ भी नहीं है सो हमेशा बोलना श्रोता हूँ कि जहने भी कोई भी मूवमेंट इंदा प्यारा मूवमेंट इंदा हा तुंदा शरीर तुंदा साथ दिच्छू करता तुंदा शरीर तुस सो गया ना तो तुहे लखपति भी ना और तुहे करोड़पति भी हैं है ना सो आइए जी एंजॉय कर दें और हुन दिन तो सब भी जो एक गीत बने रहे तो भजन माफ करा बने रहे तो सब आज सचिन कपूर सो गए गूंज अपने बन रहे

0: শ্রোতা এফএম ব্যান্ড 91.9 দুই মেগাহার্টজ পর ভেড়ি গুঞ্জন ধর্মশালা তো সব টিউন কর রহে আর ভেড়ি গুঞ্জন মা তো হিন্দি আপনি গপ্পা লাইভ হুন কর দেন আর যে সচিন কাপুর সোগে আজ চলিয়ে যে এক ম্যাচ তা পুছগো যদি বিজেপি এ কে এস ও জিত হাসিল করে লি কজো কে আবে মেয়র কে এসো বিজেপি রে মে বি বেখনা হা কজো কি 11 সিটা কে এনসো বিজেপি এ জিতি লেন 5 কংগ্রেস লেন লেকিন এতো বাদ আক ওর चैंपियन खिताब के आसो बुना हा इंतजार ख़त्म होना हा आज अहमदाबाद में पूरे गल जरूर दस लै श्रोता तुसू लेकिन इन श्रोता गण ना सो के कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: नमस्कार जी सचिन जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार
1: जी। हाँ जी मैं सुखदेव बोला था।
0: अच्छा जी नमस्ते सुखदेव जी कड़ी थो
1: बोल रहे थोड़े ग्राइंड जी।
0: अच्छा और ठीक ठाक राजी बाजी
1: राजी बाजी का है ना बीमार गड्ढे भर पे लंबे
0: ओहो क्या होया
1: मेंजो अटैक हुई यानी
0: ओहो
1: अटैक हुई है।
0: अच्छा
1: हां जी
0: फिर
1: दो महीने हुई है ना।
0: अच्छा
1: तो ये सुना दे तुम्हारी हमारे साथ गाना गाने सुना दे
0: ते... चलिए था सौभाग्यशाली हूँ पर मतलब इस समय ठीक फील करो कर दें तो है
1: फील बढ़िया फिर टला देकर ना मारा मारे भी खुश बढ़िया होगा।
0: अच्छा
1: हाँ जी हाँ जी
0: हाँ जी टांडा ही होया इलाज
1: ना टांडा नहीं 40 जो है जी एमरजेंसी करवाना के लिए।
0: अच्छा अच्छा 40 से
1: हाँ जी।
0: अच्छा चलिए हूँ ठीक ठीक है ना हूँ
1: हाँ हूँ तो ठीक है हूँ तो ये है कि दो महीने रेस्ट दस दिए तो हूँ रेस्ट करना ही।
0: हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी कुंडन की थोड़ा पसंद कर ले
1: वो सुनाई जब तुम्हें मर्जी है ना ये दो चार दिन आनी है बैठ नहीं है पक्का है मेरा सुन समझता है कितना गाने में ले फोन ले के।
0: अच्छा
1: बोलो तेरे का बट भी मांगी है लगने वहाँ बोल दिया।
0: हाँ जी बिलकुल प्यारे दया गीत भजन के असो हुण अंदर है ना जी
1: मन भी खुश हो जरा।
0: चलिए जी
1: ठीक है जी
0: ठीक है जनाब धन्यवाद। श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ये सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा के अंसर चल रही हैं ता श्रोता हूँ वाकई में ना लाइफ रहा कुछ पता नहीं कि कहने क्या कि ऐसा क्या पूछेगा। अच्छा अब तुंदे सामने कॉल से आई ने इन बहुत पुराने मतलब आई थिंक ज़्यादा था ना अगर डेढ़ साल था वीडियो होनू कर दें और इस कार्यक्रम सो के जुड़ रहे हैं तो पुराने इंदे श्रोता और लगातार असू के कनेक्ट रहते थे। अब एरा कि सेहत रहा कोई भरोसा नहीं कहने क्या है बुझ के अच्छा इंसान जो कुछ कि इंदा खान पीन भी तसे साबरा और इंदा लाइफ स्टाइल के सोता से साबरा बनी कुछ रहा असू सौ गलारी बेफालतू री टेंशन आ गया ना सो भी असू हिन नहीं हिन है ना इस हिसाब रहा कि असो लाइफ स्टाइल बनी कुछ रहा हा शो तो आजकल इंसान रहा और लाइफ रहा कोई भरोसा नहीं कि कहना कैसी होगी कि असो क्या बच गया। अच्छा सो हमेशा खुश रहना कि असो बहुत ज़रूरी है तंदुरुस्त रहना कि असो बहुत ज़रूरी है। बहरहाल तो तुसु जो लेकर चलते हैं और चुनाव परिणाम 2026 वा कि असो तू हो गया है शेयर कर दें जी कि 17 वर्ड थी है इन दे तू वो दस थी है था। चलिए जी आऊँ दस दा चलता 16 वर्ड में सो माफ करे 17 वर्ड में बीजेपी कांग्रेस और आजाद उम्मीदवार रे बीच के ऐसो कड़ा मुकाबला हुआ कई वार्ड में के ऐसो कांटे रे टक्कर भी रही शो तो वार्ड नंबर आख तो शुरू कर दें। वार्ड नंबर आख में बीजेपी अरी रेखा देवी है कि असो विजय हासिल किया 263 वोटा थो और 47 वोटा थों किया सो जीत हासिल कर रहा। जी बिल्कुल वार्ड नंबर आखता हूँ बीजेपी री रेखा देवी है किया सो विजयी 263 वोटा थों किया सो हासिल करे और 47 वोटा थों जीत हासिल तो यानी कि 47 वोट के सो जताए गए। वार्ड नंबर 2 भागसुनाग बहुत हॉट सीट किया सो रहे थे, कुछ वीडियो भी वायरल हुई थी, कुछ पुराने दिग्गज भी थी वार्ड नंबर 2 में शमशेर सिंह नैरिय किया सो ले गया जी बाजी मारे करे। वार्ड नंबर 2 भागसुनाग तो भाजपा प्रत्याशी शमशेर सिंह विजेता घोषित भुवन 676 वोटा थो सो तो। वार्ड नंबर 3 री गल करूँ तो मैकलोडगंज भाजपा री आशा देवी है विजय प्राप्त किया सो तो और 368 वोटा थो किया सो जीते गए हैं। वार्ड नंबर 4 में पूर्व मेयर एवं कांग्रेसी प्रत्याशी नीनू शर्मा विजय हासिल करे 607 वोटा थो, करीब 350 प्लस वोटा थो किया सो जीत हासिल करे हा। वार्ड नंबर 4 री नीनू शर्मा शतो जो कि कांग्रेस रहा वार्ड कांग्रेस पार्टी थों की ऐसो बिलोंग कर दिया। वार्ड नंबर 5 में कांग्रेस प्रत्याशी शैलजा बढ़िया विजय शतो जो कि 627 वोटा थों जीते हैं। ये भी वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5 के कांग्रेस प्रत्याशी रहें। वार्ड नंबर 6 अंदर फिर एक मौके की ऐसो बीजेपी अपना परचम लहराओ हा। वार्ड नंबर 6 में शतो बीजेपी प्रत्याशी करिश्मा विजयी बने हैं 866 वोटा थो, भारी बहुमत वार्ड नंबर 6 थो। फिलहाल जो है पढ़ेन वार्ड तति थो सभ्यों ऊपर हाले तक ये आया नाकमो के फिर लेना चाहता करिश्मा विजयी बने हैं बीजेपी भी प्रत्याशी है और 866 वोटा थो किया सो विजयी बने हैं शो थो। वार्ड नंबर 17 है गल करिए था बीजेपी उम्मीदवार आशु विजयी बने हैं शतों 356 वोटा थो। वार्ड नंबर 8 भी बीजेपी व भुआ बीजेपी उम्मीदवार प्रेमा जी के ना 551 वोटा थो जीते हैं। वार्ड नंबर 9 आजाद प्रत्याशी नरेश कुमार विजयी बने ना 631 वोटा थो वार्ड नंबर 9 थो। हेरे लिया अगर तुंदी पहल अच्छी है अगर तुंदी चुनावी रणनीति अच्छी है अगर तुंदी धरातल में पकड़ हा तो कसियो भी कुछ बोलने भी ज़रूरत नहीं है ना बीजेपी ना कांग्रेस ना कस की हो रही हो तो तुंदी अगर पहल अच्छी है तुंदी पकड़ अच्छी है तो आज़ाद प्रत्याशी भी क्या सो जीते सकते हैं। नरेश कुमार क्या सो विजय बने 631 वोट पैन। वार्ड नंबर 10 कांग्रेस प्रत्याशी सुदेश शास्त्री विजयी बने 673 वोटा थो। वार्ड नंबर 10 भी कांग्रेस रहना। वार्ड नंबर 11 भी वार्ड नंबर 11 थो कांग्रेस प्रत्याशी अनुराग विजयी बने हिन और 652 वोटा थो शो थो। वार्ड नंबर 12 थो मीना कुमारी विजयी बने हैं 992 वोटा थो। मीना कुमारी वार्ड नंबर 12 थो मीना कुमारी विजयी बने हैं 992 वोटा थो। ये दुआ नंबर दुआ आंकड़ा जो इतने भारी माता थो कि ऐसो जीते हैं हालांकि इतिया साइनस वाले देतु रहने वैसे बीजेपी रे हिन जड़ तक रहा इन जो जानता। वार्ड नंबर 13 री बीजेपी थो हर्ष ओबराय किया विजयी बने 636 वोटा थो। वार्ड नंबर 14 फिर कांग्रेस रे हवाले हुआ है। वार्ड नंबर 14 कांग्रेस प्रत्याशी अनुज भी बम्पर जीत ओ माय गॉड बिल्कुल ये सब भी मोटे जी। वार्ड नंबर 14 अनुज भी बम्पर जीत हुआ 1050 वोटा थो 434 वोटा थो जीता 434 वोटा रे किया सो लीडर। वार्ड नंबर 14 रहे इंदे अक मौके फिर दसना चाहता कांग्रेस प्रत्याशी अनुश्री बंपर जी 1050 वोटा थो जीते हैं 434 वोटा थो किया सो जीत करे आई। वार्ड नंबर 15 री गल करिए सो तो बीजेपी रे प्रवीण कुमार 985 वोटा थो जीते। वार्ड नंबर 16 रे गल करिए ये भी बीजेपी रहे हैं बीजेपी वे अनुपमा कटोज विजयी बने और हाँ 546 वोट तो ये विजयी बने अशो तो तैया फिलहाल तो सब बन रहे ना वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो गया और बिल्कुल ए लिस्ट तुझ हो गया है शेयर कर रही थी ए लिस्ट तू सब भी उदा सीता की कड़ी कड़ी कौन कौन की एक पार्टी रह गया सो विजयी बनो हाँ तो बहरहाल है चल दिन थोड़ा करे और हगूँ और अगली फरमाइश कर देन पूरी।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा हो बिल्कुल लाइव कार्यक्रम इस समय चल रहा तुंदे वेडियो सेट में तो सब बने सकते हैं जोड़े सकते हैं 7018887090 पर नंबर आक मौके फिर आऊँ तो वो कि शेयर करनो हाँ 7018887090 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत के सो होने सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी के सो साझा कर सकते हैं इन श्रोताओं और जी कि तो सब श्रोता जानते हैं जी कोई नवा गीत इंदा हा तो है जरूर तो गीत जो कि सो ब्रॉडकास्ट कर दें ताकि इन श्रोता तक सो गीत के सो जरूर पूजा और कोशिश रहें कि इन श्रोता तक गीत का आनंद के सो जरूर लें। बहरहाल इनकी कोशिश ये भी रहेंदे कि इस कार्यक्रम रे माध्यम थो इन श्रोता तक हर एक जानकारी की सो जरूर पूजा है ना जी। और मुझे अक मुख्य इन एक बड़े आदरणीय हैं राकेश भारद्वाज जी जो कि बडोली रे निवासी हैं तिन्या बल्लो थो कि तो है अपने इस कार्यक्रम में के ऐसो खेल समाचार जो इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि कि युवा भी बहुत सारे तुसु हूँ दिन तसो जरूर देव करा तो चलिए जी आज इंटरेस्टेड भी आज मुकाबला भी बड़ा तकड़ा है आज चैंपियन ट्रॉफी भी छुकिया असो लड़ाई भी बड़ी तकड़ी है और ये लड़ाई बुनिया अहमदाबाद में अहमदाबाद रे अजय इन शोतों के अहमदाबाद में आईपीएल खिताब किया सो कसकुण जितना जी बिल्कुल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीतते हैं या फिर गुजरात टाइटन्स किया सो जीतते हैं जबरदस्त भिड़ंत बुने जबरदस्त मुकाबला हा शोतों और रजत जो कि आरसीसी वे आरसीबी रे माफ़ करा आरसीबी रे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु रे कप्तान हिन यारी कप्तानी में दूजी मौके गया सो आरसीबी फाइनल खेलना हा शोतों और गिलरी कप्तानी में पहला फाइनल किया सो खेलना लगे है गुजरात अहमदाबाद में ये बिल्कुल आईपीएल मुकाबला है आईपीएल 2026 रा फाइनल मुकाबला आज 7:30 पहली बॉल पे गाने 6 लगी पैना मैच शुरू हो चुका है पर 7:30 पहली बॉल पैनी हाँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स रे बिच खेलना है आज मुकाबला श्रोता हूँ खिताबी मुकाबले भी मेज़बानी की असो अहमदाबाद रे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम मंज बोने हाँ दोनों ही टीम आ गया नसो दमदार हिन दमदार फॉर्म में तक नसो गुजरू कर दी हिन ताई ये फाइनल में पुजी हिन और दूजी बार ट्रॉफी उठाने चुकनेरी तलाश में किया सो भोने हाँ आरसीबी श्रोता हूँ रविवार जो आज यानी कि 7:30 पहली गेंद पेगानी और आज के सो फैसला भी चली ना कि आईपीएल रा खिताब किया सुख से रहना है बुना हाँ फाइनल चैंपियन ट्रॉफी रा खिताब 2026 किया सुकासी ने कप्ताना चुकना हाँ रजत शुक्ला या फिर गिल शुक्ला इतना पे वक्त ही दस लाश होता हूँ। बहरहाल कार्यक्रम में चल दें थोड़ा करे और हगूँ और तू सब भी हो हुनन दिन ये गीत बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सोगी गूंज अपने पन रही

0: गम कोई भी बहुत सुखा रहना बुंदा, दुख कोई भी बहुत सदा सुखा रहना बुंदा। जी बिल्कुल, जाए सो छी मेरा दुख बुआ, जाए सो कोई और अन्य दुख बुआ। बरा लिंद अगले श्रोता सो के कनेक्टेड हिन पुस दिन कौन बलून दिन और कड़ी दो बलून दिन। नमस्ते जी।
1: हाँ जी नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, नमस्ते जेंगो गाइड जी, कड़ी थी ये तो है।
1: हाँ जी, आओ घर है तू,
0: मुझे तो लगो तो

0: अच्छा,
1: हाँ जी
0: चलिए ठीक है जी। और राजीव बाजी कुशल मंगल। हेलो, हेलो महाराज, आवाज तुम दे कटेगी चलेगी करखा। श्रोता FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा। और कार्यक्रम इस वक्त हिंदी अपनी गप्पा कैन सो चल रही ना आइया कार्यक्रम जो हगू लेकर चल देन। और कार्यक्रम मंच इन द्रोतागण असो के कनेक्टेड थी है, लेकिन यारे जो आवाज़ है सो एकदम ही न जाने का यो सिग्नल अरे कारण क्या, सो आई थिंक असो के कनेक्ट ना बुझ सके और डिसकनेक्ट किए सो बुझ गए। ता शोधों कार्यक्रम में जो हगुम बढ़ देन और तो सब श्रोता जरूर जुड़ सकते 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर नंबर आख मौके फिर आऊँ शेयर करना तो होगी 7 0 8 8 8 8 7 0 9 8 पर तो है कॉल कर सकते हैं। और कॉल कर कर ही अपना पसंदीदा गीत के ऐसा हो नहीं सकते हैं। ताइया कुछ एक और जानकारी तो होगी शेयर करते हैं। राजस्थान रॉयल रा मुख्य कोच कुमार संगकारा रा मानना है कि वैभव सूर्यवंशी अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वास्ते के सब पूरी तरीके होगी तैयार है। IPL 2026 में इस युवा बल्लेबाजे व बल्लेबाज का प्रदर्शन करीब थो हेरो है। और संगकारा ये बलना है ये लगता है कि जल्द ही तीनों के सो भारतीय टीम में शामिल कर लेना चिंता है। और इसी सो की श्रोता हूँ तुसु अगली जानकारी भी खेल समाचार रे अभिनंदन सूर्य गिल बाहर और वैभव शामिल भुवन BCCI है किया सो एशियाई खेल वे 30 खिलाड़ियों जो कि सो सूची भेजे 19 सितंबर तो किया श्रोता हूँ सो 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक चलना है खेल ती अंदर 10 ले फिलहाल इंद श्रोतागण कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
2: नमस्ते भाई।
0: नमस्ते जी। नमस्ते।
2: ठीक ठाक ना?
0: बहुत बढ़िया जी। तो भले तो ठीक ठाक ना?
2: हाँ जी जीत गया तुम दे वोटा सब
0: इंदा तो कोई भी नहीं है जी है अपने आप ही ना
2: ओ तुम दे वक्खे तो बुल्ला कोई खड़ी हो रहा है
0: आज तो वही तो पूरी धर्मशाला अपनी ऐसी कोई गल नहीं है सब जीत गए मुबारक भी दी थी है जो जो जस जस पार्टी रे जितो सो ना भी रहे है लेते ना जी
2: सब जीत गए अब सब भी मुबारक तू सो भी
0: हां जी
2: जितने आ रहे हो भी
0: अबे बस ये जी कि अबे अगले 5 साल है भी इंदा जो काम सो करना है ना जी
2: हाँ जी और घर सारे मम्मी मम्मी
0: जी जी ठीक ने सब बढ़िया ने कुंदन की थोड़ा तुसु
2: बोले शंकर नहीं है कोई अद
0: बोले शंकर जी रे भी पहले भी फरमाइश आया किंदे छोटी दे नन्नी दे इंदी फरम शोता तैयारी ता जरूर तिंजो भी हुनंदन है गीत और सुनील राणा जी री आवाज में तुसु भी हुनंदन बाकी कुछ नोई ताजी तुंदे आज तोार थो रविवार रे कुछ नोई ताजी हा
2: रविवार आई कोई नोई ताजी नहीं आज इन दे बखे जीती गया दाड़ी ने कोई रिजल्ट
0: हां जी हां जी
2: कहिया
0: अच्छा चलिया ता ढोल निगाड़े और संजय ता किटी पार्टी भी होनी आज सब जगह
2: आज सब जगह होने यार
0: अरे अरे
2: आज सीने आए रे लोर
0: हां जी
2: किन्या चीज जरा हां जी
0: चलिए ठीक है जी जरूर
2: धन्यवाद
0: धन्यवाद जी शो तो आइए कार्यक्रम में तो सब बन रहे ने समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला सोगे और कार्यक्रम जो थोड़ा करी और हगो बनंदन और उनंदन ने प्यारे दे गीत

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून करो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा तो है हूँ करते थे बिल्कुल लाइव अपने आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर सो की श्रोतो बल्द ने वक्त रे अगल किया सो बड़ी छैल और बड़ी अच्छी है वक्त के ना भी बहुत सो कटे गंदा निकले गंदा हा और वक्त जाए खराब हुआ जाए बुरा हुआ सो जरूर निकले गंदा है ना सो कभी भी खरे वक्त में के सो ज़्यादा घमंड ना करना और बुरे वक्त में ज़्यादा परेशान ना बुना श्रोतों को जो कि वक्त कभी भी किया सो बदले सकता है और वक्त किया सो कभी भी बदले गंदा है श्रोतों है ना सो ज़्यादा ना सोचना और ज़्यादा किया सो वक्त पर गुमान भी ना करना वक्त कभी भी कुछ भी किया सो कर सकता है तो बहरहाल आऊँ सचिन कपूर ले लेनो तो सुथो इजाजत समय बुझगो तो सु सब भी जो टाटा बाय बाय बलने रहा और गंदे गंदे बस ये बलना चाहूँ तो सब भी जो कि खुश रहे या तंदुरुस्त रहे या और खुश रहने ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है तंदुरुस्त रहने ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है बाकी छोटी मोटी चीज़ा ज़िंदगी में चली रही भगवान की सो कोई ऐसा दुख ना ला कोई ऐसी बीमारी ना ला कोई ऐसी दुर्घटना ना करा जति थो इंसान के सो टूटे गच्छा है ना तो बाकी था नॉर्मल लाइफ और नॉर्मल लाइफ में सब कुछ बंदा या सब कुछ फेस करना ही पैंता है ना सो आपू भी खुश रहे दुए भी खुश रखा ये तूने करी कोशिश किया सो जरूर कर अपनी साइड थो तो हूँ सचिन कपूर हाँ तुस थो अब इजाजत लेने रहा दिल तो ना बोलता शो तो लेकिन क्या करिए इजाजत तो लेना ही पैनी है ना गाने तो पैना है बिना बिना बिना गचूरे फिर दत्ते की मुड़ लै है सो फिलहाल तुसु सब भी तो ले लेनो इजाजत तुसु सब भी जो करीनो टाटा बाय बाय अलविदा और सिर्फ ये बोलना चाहनो कि खुश रहिया तंदुरुस्त रहिया

नमस्कार, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। दस्तावेज सत्यापन में शामिल ना होने पर आयोग की कोई गलती नहीं। सरकार वन भूमि पर गिरे पेड़ हटाने के लिए कल से चलाएगी मुहिम। कल तक वेतन ना आया तो चक्का जाम करेंगे HRTC कर्मी। जनगणना में अधिकारी ने अभद्र सवाल पूछा तो हो सकती है 3 साल की जेल। एक माह में तीसरी बार धर्मशाला में खेलने उतरेंगे विराट कोहली। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दस्तावेज सत्यापन के मामले में स्पष्ट किया कि यदि कोई उम्मीदवार अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण सरकारी भर्ती प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज सत्यापन में शामिल नहीं हो पाता है तो इसके लिए भर्ती आयोग के जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अदालत का कहना है कि ऐसे मामलों में अन्य सफल उम्मीदवारों के अधिकार तय हो जाते हैं, इसलिए सहानुभूति के आधार पर कोई राहत नहीं दी जा सकती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में आए अंधड़ के कारण वन भूमि पर गिरे और उखड़े पेड़ों की जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिए। उनका कहना है कि इन पेड़ों को हटाने के लिए 1 जून से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। गिरे हुए पेड़ों को हटाने में देरी से राज्य को संसाधनों की हानि होती है, इसलिए वन विभाग प्राथमिकता के आधार पर इनका शीघ्र निष्पादन और निस्तारण सुनिश्चित करे। हिमाचल सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए शुरू की गई राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 के तहत ई टैक्सी सेवा की चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया। ई टैक्सी योजना में चयन के लिए अब क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ड्राइविंग टेस्ट लेंगे। परिवहन विभाग ने इसे लेकर नई अधिसूचना जारी कर पात्रता तय करने की प्रक्रिया को संशोधित कर दिया है। 1 जून को वेतन खातों में ना आने पर कल रात 12 बजे के बाद HRTC कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। परिवहन निगम के चालक संघ के अध्यक्ष मान सिंह और परिचालक संघ के अध्यक्ष प्रीत महेंद्र व अन्य पदाधिकारियों ने ये ऐलान किया है। पत्रकारों से बात करते हुए इन पदाधिकारियों ने कहा है कि यदि वेतन 1 जून को खातों में नहीं डाला गया तो बुकिंग ना लें। 2 तारीख से पूरे प्रदेश भर में बसों के पहिए थम जाएंगे। जनगणना 2027 के दौरान किसी भी नागरिक से अभद्र, अनावश्यक या निर्धारित प्रश्नावली से बाहर सवाल पूछने वाले अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में 3 साल तक की जेल और 1,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जनगणना निदेशालय ने प्रदेश भर में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे केवल निर्धारित प्रश्न ही पूछें, गलत जानकारी दर्ज ना करें और नागरिकों की निजी सूचनाओं को पूरी तरह गोपनीय रखें। किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपियो में 3 जून से विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न राज्यों से 100 युवा प्रतिभागी भाग लेंगे, जिसमें देश भर के राज्यों की संस्कृति व जीवन शैली की झलक दिखेगी। इसका मुख्य उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों का समग्र विकास करना है। ये युवाओं में राष्ट्र निर्माण की भावना जगाने की बड़ी पहल है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में क्रिकेट का रोमांच एक बार फिर चरम पर पहुंचने वाला है। IPL के दौरान 2 बार धर्मशाला आ चुके भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अब 1 माह के भीतर तीसरी बार धर्मशाला की खूबसूरत वादियों में उतरेंगे। इस बार उनके साथ रोहित शर्मा समेत भारतीय टीम के कई बड़े सितारे भी मैदान पर अपने बल्ले का जलवा दिखाएंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला धर्मशाला में 13 जून को खेला जाएगा। HPCA स्टेडियम इस हाई प्रोफाइल मुकाबले की मेजबानी करेगा, जहाँ क्रिकेट प्रेमियों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का रोमांच देखने का मौका मिलेगा। NTA के अंदर खामी किस तरह व्याप्त है, इसका नजारा शनिवार को फिर दिखा। NEET UG के पेपर लीक व CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग के जरिए कराए गए मूल्यांकन में गड़बड़ियों का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि शनिवार को विश्वविद्यालयों के स्नातक कोर्सों में प्रवेश से जुड़ी और NEET UG के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा CUET की गड़बड़ियों का एक नया मामला सामने आया।
अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर असमंजस का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन को लेकर अड़े ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ अभी कोई समझौता तय नहीं है, इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। हिमाचल प्रदेश एंट्री करते ही आपको ताजी हवा की सुगंध आने लगेगी, लेकिन जैसे ही आप राज्य के सोलन जिले में प्रवेश करते हैं तो बद्दी नालागढ़ में एक अजीब सी दुर्गंध सांसें रोकने लगती है। आंखों में जलन होने लगती है और कुछ मिनटों में गला भारी होने लगता है। लेकिन करीब 35 किलोमीटर लंबे बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ कॉरिडोर में रहने वाली 1.5 से 2 लाख की आबादी इससे भी गंभीर दुष्प्रभावों से जूझ रही है। यहाँ करीब 600 दवा निर्माण फैक्ट्रियां हैं, जहाँ से 200 देशों में दवाएं निर्यात होती हैं। भारत की 40% दवाएं यहीं बनती हैं, लेकिन फैक्ट्रियों से निकलने वाले अनट्रीटेड एंटीबायोटिक कचरे ने यहाँ की हवा और पानी दोनों बिगाड़ दिए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आरक्षण से जुड़ी भर्ती प्रक्रिया पर अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण अथवा छूट प्राप्त मानकों का लाभ लेकर मुख्य परीक्षा तक पहुंचा है, उसे बाद में सामान्य वर्ग की सीट पर समायोजित नहीं किया जा सकता, भले ही उसने अंतिम चयन में सामान्य वर्ग के कट ऑफ से अधिक अंक हासिल कर लिए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश वीसी नेगी की खंडपीठ ने ये फैसला देते हुए वर्ष 2015 में घोषित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा एवं संबद्ध सेवाओं की भर्ती परीक्षा की मेरिट सूची का पुनर्निर्धारण करने के निर्देश हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को दिए हैं। इस साल खरीफ सीजन की बुआई शुरू होने से पहले मानसून कमतर रहने के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार 1 जून 2026 से देशव्यापी खेत बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत किसानों को उनके इलाके और फसल के हिसाब से खास सलाह दी जाएगी, ताकि वे मौसम के जोखिमों को समझकर सही फैसला ले सकें। अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल के दौरान इस बार पर्यटकों और स्थानीय लोगों को रोमांच का नया अनुभव मिलने जा रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान से हॉट एयर बैलून के जरिए आकाश की सैर कर शिमला की खूबसूरत वादियों और पहाड़ों का नजारा देखने का अवसर मिलेगा। 8 से 12 जून तक आयोजित होने वाले समर फेस्टिवल के लिए शुरू की जा रही हॉट एयर बैलून सेवा का शनिवार को सफलतापूर्वक टेस्ट ट्रायल किया गया। वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा कि मई 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, लेकिन वैश्विक स्तर पर मौजूद चुनौतियों को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। मंत्रालय के अनुसार सेवा क्षेत्र के निर्यात में मजबूती, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और स्थिर श्रम बाजार ने देश की आर्थिक स्थिति को सहारा दिया है। अब एक नजर डालते हैं मौसम की अपडेट पे। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी अंधड़ के बीच बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का दौर जारी रहा, जबकि रविवार को मौसम जो है थोड़ा बहुत साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार 5 जून तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहने का अनुमान है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।
1: अभी न जाओ छोड़ कर

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

91.2 MHz पर श्रोताओं तुम सारे ने ही ट्यून की तय थोड़ा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और संजय देव जी एन छे और इस समय रहा थोड़े अपने कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला दा। तो सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी राम राम नमस्कार गुड इवनिंग। श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला वो कार्यक्रम है जिसमें हमारे सभी श्रोता जुड़ते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों या बड़े हों, अपने ग्रामीण इलाके के हों या शहरी इलाके के लोग हों, हिंदी जानने वाले हों, पहाड़ी जानने वाले हों, इंग्लिश जानने वाले हों, पंजाबी जानने वाले हों, तो सभी श्रोताओं के साथ हमारा बात करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो सभी श्रोताओं को हम बता दें कि कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जो है वो अब शुरू हो गया है और इस कार्यक्रम का समय हमारे सभी नियमित श्रोता जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बता दें कि ये कार्यक्रम रोज़ाना आप सुनते हैं शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक और श्रोताओं ये 2 घंटों का सफ़र आपके साथ हम बिताते हैं, बातें करते हैं, जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं और साथ ही प्यारे प्यारे गीतों को लेकर आते हैं आप तक पहुंचाने के लिए, आपका मनोरंजन करवाने के लिए। तो श्रोताओं सबसे पहले बात करेंगे हम आज के दिन की। आज संडे का दिन था और संडे की अब शाम आ चुकी है। ये वो समय होता है जब हमारे दिल में, हमारे दिमाग में बहुत सी उथल पुथल चल पड़ती है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे यानी कि सुबह मंडे मॉर्निंग है और मंडे मॉर्निंग यानी कि हमें अपने आप को बिल्कुल रेडी रखना पड़ता है हर काम के लिए। कहीं निकलना है उसके लिए शाम को ही सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो श्रोताओं आप सभी इसी उधेड़बुन में लगे होंगे कि मंडे आ गया, संडे ख़त्म हो गया और अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आप सभी सोचिए कि आपने आज संडे शाम को क्या करना है, सुबह की कौन सी तैयारियां करनी है और हम आपका करवाएंगे मनोरंजन, साथ ही आपके साथ करेंगे बातचीत भी। ये रेडियो गुंजन धर्मशाला आपका हर बात के लिए ख्याल रखता है। श्रोताओं आपकी कोई भी परेशानी हो, किसी भी विषय पर हम बातचीत करते हैं ताकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात में किसी ना किसी को कोई हल ज़रूर मिले। और श्रोताओं रविवार की ये शाम फिर से आ गई है, यानी कि फिर से हमें रेडी होना है अगले हफ्ते के लिए, अगले नए दिन के लिए। तो श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम इन लाइनों के साथ जो हमें कहती हैं, ज़िंदगी तभी सफल मानी जाती है जब खुद का परिचय खुद ना देना पड़े। बिल्कुल श्रोताओं बहुत बड़ी बात है, छोटी सी लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, लेकिन बातें बात और इसका जो निचोड़ है वो बहुत बड़ा है। इन्हीं लाइनों के साथ और कार्यक्रम में बातों के साथ हमने कर दी है शुरुआत और आप सभी को इंतज़ार रहता है कार्यक्रम में गीत संगीत का भी। तो चलते हैं देर ना करते हुए, बहुत ही प्यारा गीत आप तक पहुँचाते हैं दुश्मन फिल्म से। और श्रोताओं इस गीत में आवाज़ें आप सुनेंगे उदित नारायण और लता मंगेशकर की।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। शाम क्या समय है और इस समय आप सभी सुनते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हमने कर दी इस प्यारे से गीत के साथ, और हमने भी आपको इस गीत के साथ साथ आवाज़ दे दी है कि रेडियो गुंजन धर्मशाला ऑन कर लीजिए, क्योंकि कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जो है वो अब शुरू हो चुका है। श्रोताओं, ये सफ़र हमारा रहेगा 8 बजे तक, और हमारे जो श्रोता हैं वो ज़रूर हमारे साथ जुड़े होंगे। शाम का ये समय है, और साथ ही श्रोताओं, आज देखिए संडे तो है ही है, लेकिन मई मंथ का आखिरी दिन है। ये दिन, ये समय किस तरह से बीतता चला जाता है पता भी नहीं चलता। ऐसा लगता है कि कुछ ही दिन पहले हमने 2026 की शुरुआत की थी, और हम बहुत खुश थे कि एक नया साल हम देख रहे हैं, लेकिन देखिए आते आते साल कहाँ पहुँच गया। ये मई का महीना भी आज ख़त्म होने वाला है, और सुबह हम जून के मंथ में कदम रखेंगे। तो श्रोताओं, ये समय है, समय को कोई भी पकड़ नहीं पाया है। समय अपनी रफ्तार से दौड़ता चला जाता है, लेकिन अगर हमें समय के साथ चलना है तो समय के अनुसार अपने सारे काम करने पड़ेंगे। हम अपनी सोच के हिसाब से चलेंगे, अपने समय के हिसाब से चलेंगे, तो हो सकता है हमें वहाँ पहुँचने में वक्त लगे या देर हो जाए जहाँ हमें पहुँचना है, यानी कि अपनी मंजिल पर। एक एक मिनट, एक एक दिन हमारे लिए बहुत कीमती है श्रोताओं। ये समय हमें सिखाता है, लेकिन बस सीखने की एक नज़र होना चाहिए। तो श्रोताओं, आज 31 मई का दिन है, और ज़रूर हम बात करेंगे आज के दिन पर। हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य श्रोताओं ये रहता है कि लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य नुकसान के प्रति जागरूक करना होता है। तंबाकू केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक ऐसी लत है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। धूम्रपान, गुटखा, खैनी, जर्दा और अन्य तंबाकू उत्पाद कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियां और कई अन्य गंभीर समस्याओं का कारण बन सकते हैं। तो श्रोताओं, आज थोड़ी सी बातचीत हम ज़रूर इस विषय पर करेंगे। श्रोताओं, तंबाकू जो सेवन करता है उसके लिए तो हानिकारक होता ही है, लेकिन साथ में रहने वाले लोगों को भी उसका बहुत नुकसान होता है। इसलिए हम आए दिन आपको कहते हैं कि नशे से दूर रहिए। किसी भी तरह का नशा है वो किसी के लिए भी बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर नशा करना है तो सफलता का कीजिए, जीत का कीजिए, मेहनत का कीजिए। जिस नशे को करके हमें कुछ मिलेगा, हमारा नाम होगा, हमारा सम्मान होगा। तो श्रोताओं, अपनी बातों को यहीं पर रोकते हैं, और फिर से लेते हैं कार्यक्रम में एक और प्यारा सा गीत। चलते हैं, सुनते हैं जीत फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज़ें रहेंगी सोनू निगम और अलका याग्निक की।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और कार्यक्रम में इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे वर्ल्ड नो तंबाकू डे पर। तो श्रोताओं आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे समाज विशेषकर युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है, तंबाकू की लत और इससे बचाव। युवावस्था सपने देखने, सीखने और आगे बढ़ने का समय होता है, लेकिन कई बार जिज्ञासा, दोस्तों का दबाव या दिखावे की प्रवृत्ति युवाओं को तंबाकू और अन्य नशों की ओर आकर्षित कर देती है। श्रोताओं शुरुआत भले ही मजाक या शौक के तौर पर हो, लेकिन धीरे धीरे ये आदत एक गंभीर लत का रूप ले सकती है। युवाओं को तंबाकू से दूर रखने के लिए सबसे पहले परिवार और समाज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। श्रोताओं माता पिता को बच्चों के साथ खुलकर संवाद करना चाहिए, यानी कि कुछ समय उनके साथ ज़रूर बिताना चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और उन्हें तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में भी नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए ताकि युवा सही जानकारी पा सकें। श्रोताओं कई बार हम बड़े बुज़ुर्ग जो हैं अपने बच्चों को भी समझाते हैं कि ये चीज़ अच्छी बात नहीं है, हमें इससे बच के रहना चाहिए। और अगर हमारे युवा समझदार होंगे तो ये कहते हैं कि हमें हमारा अच्छा बुरा पता होता है, हमें भी पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, आप उसकी चिंता ना करें। श्रोताओं हो सकता है कि आपके बच्चे का जो सोच है वो बिल्कुल सही हो, लेकिन हाँ कब कहाँ कौन ऐसा मिल जाए जो उन्हें उस लत में लगा दे, इसलिए थोड़ा सा उनके जो फ्रेंड सर्कल है उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कितने बजे घर आ रहे हैं, कितने बजे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो अपने बच्चों को प्यार के साथ रखिए, प्यार के साथ समझाइए, हर बात को वो समझते हैं, लेकिन बस एक समझाने का हमारा तरीका जो है वो सही होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात नशा जो कि हमारे युवाओं को या हमारे भविष्य को खा रहा है, उससे हमें अपने जनरेशन को अपने बच्चों को किस तरह से बचाना है, ये गंभीर समस्या है श्रोताओं, सोचने वाली बात है। और अगर हम सोचेंगे समझेंगे और इस पर सोच विचार करके कोई अच्छा कदम उठाएंगे तो अपने युवाओं को अपने बच्चों को इससे बचा सकते हैं। तो कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक और प्यारा सा गीत, क्योंकि बातें अगर लंबी होंगी तो हमारे श्रोता थोड़ा सा बोर हो सकते हैं। तो चलते हैं बातों को यहीं पर रोकते हैं और चलते हैं आपको सुनवाते हैं, और साथ ही आपके साथ भी हम सुनते हैं हम सब उस्ताद हैं इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

श्रोताओं, आपने अभी सुना ये प्यारा सा गीत। इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने। श्रोताओं, इस गीत को किशोर कुमार जी ने भी गाया है और लता मंगेशकर ने भी, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुना वो लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और आपको हम बता दें कि आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय हो रहा है एक छोटे से अंतराल का। छोटे से अंतराल के बाद फिर से हम वापस लौटेंगे, कार्यक्रम में जुड़ेंगे। और आप सभी भी यूँ ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। सुनिए कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। श्रोताओं, गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम का समय, जैसे कि आप सभी जानते हैं, रहता है शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, और कार्यक्रम में हम आपके साथ करते हैं बातचीत और साथ ही आपका मनोरंजन करवाते हैं प्यारे प्यारे गीतों के साथ, और साथ ही बहुत सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का प्रयास हमारा रहता ही है। तो जानकारी की बात की है तो चलते हैं जानकारी की ओर, पहुँचाते हैं आप तक एक जानकारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और जमा 2 कक्षा की पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट्स तथा सुधार यानी कि इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। श्रोताओं, बोर्ड सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा द्वारा बताया गया है कि अब विद्यार्थी 5 जून तक बिना किसी विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार यदि कोई परीक्षार्थी 5 जून तक आवेदन नहीं कर पाता है तो उसे 10 जून तक 1000 विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। तो श्रोताओं, ये जानकारी आपको ज़रूर लाभकारी होगी, आपके लिए हमारा ऐसा मानना है। तो श्रोताओं, इस जानकारी के बाद अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और आपको सुनवाएंगे एक प्यारा सा गीत। लीजिए आप सभी की नज़र ये प्यारा सा गीत।

अखियों के झरोंके से। इस फिल्म का गीत श्रोताओं भी आपने सुना हेमलता की आवाज़ में। 91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और इस समय आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हम बात कर रहे हैं धूम्रपान से बचाव की या धूम्रपान से होने वाले नुकसान की। तो श्रोताओं, बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जो पहले से ही तंबाकू के नशे की गिरफ्त में हैं, उन्हें आलोचना नहीं बल्कि सहयोग की आवश्यकता होती है। परिवार और मित्र उन्हें इस आदत को छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। धीरे धीरे सेवन कम करना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, खेल कूद और योग जैसी क्रियाओं को करने से भी हम नशे से बच सकते हैं, नशे से दूर रह सकते हैं। श्रोताओं, याद रखिए, तंबाकू छोड़ने का हर प्रयास एक बेहतर और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ाया गया कदम है। आज लिया गया एक छोटा सा संकल्प आने वाले कल को सुरक्षित और खुशहाल बना सकता है। तो आज के दिन हम यही कहेंगे कि हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां युवा नशे से नहीं अपने हुनर, मेहनत और सपनों से पहचाने जाएं। तो आपको हम कार्यक्रम के माध्यम से यही संदेश देंगे कि तंबाकू को कहें ना, स्वस्थ और उज्जवल भविष्य को कहें हाँ। तो श्रोताओं, ज़रूर आप इस बात

बिल्कुल श्रोताओं, आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जिन्होंने बहुत सारे सपने सजाए होते हैं, और हर किसी की आंख जो है कोई ना कोई सपना ज़रूर देखती है, और वो सपना कई बार पूरा हो जाता है, कई बार पूरा नहीं होता है। और सपनों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हमारा एक प्रयास भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अगर आपने सपने देखे हैं श्रोताओं, तो उन सपनों को ज़रूर रोज़ याद किया कीजिए, और उन सपनों को पाने के लिए या सपने को पूरा करने के लिए क्या प्रयास हमारे होने चाहिए।

इस पर भी विचार किया कीजिए। कहते हैं ना कि सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, सपनों के लिए लड़ना या सपनों के लिए मेहनत करना बहुत बड़ी बात होती है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। गीतों के इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे श्रोताओं, और हम कई बार कहते भी हैं कि गीत हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे मित्र होते हैं। जब हमारे पास कोई भी ना हो, हम अकेले हों, तो ये गीत जब हमारे कानों में पड़ते हैं तो हमारा अकेलापन भी ख़त्म हो जाता है, और कहीं ना कहीं मन और दिमाग जो हमेशा सोच विचार में पड़ा रहता है उसे भी एक काम मिल जाता है। हम भी कहीं ना कहीं गीतों में खो जाते हैं, उन्हें गुनगुनाने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर से वही कहेंगे कि गीतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, इनके साथ थोड़ा सा गुनगुनाइए, थोड़ा सा झूमिए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। तो चलते हैं श्रोताओं अगले गीत की ओर, और ज़रूर इस गीत को आप गुनगुनाएंगे ऐसा मेरा मानना है। बहुत प्यारा गीत हिमालय की गोद में, इस फिल्म का हम पहुंचा रहे हैं आप सभी के रेडियो सेट पर। लीजिए, सुनिए मुकेश की आवाज़ में।

91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना बहुत ही प्यारा गीत। श्रोताओं बिल्कुल, कई बार हम लोग जो नहीं सोचते वो हो जाता है और जो सोचा हो उससे भी बेहतर हमें मिलता है। तो ऐसा ही गीत आपने कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में सुना। और श्रोताओं 7 बजने को हैं, यानी कि समाचारों का समय भी होने को है। तो समाचारों से पहले चलते हैं, सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत। आराधना फिल्म का ये गीत श्रोताओं आप तक पहुंचा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भंडार के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गाँव तक पहुँचाना है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत मतदाताओं की पहचान कल से ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। और गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
0: 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। समाचारों के बाद और इस अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में, जिसे आज आप सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो 6 बजे से जुड़े हों, चाहे वो थोड़ा देर सवेर के साथ हमारे साथ जुड़े हों, उन सभी को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। श्रोताओं, संडे की ये शाम है और आज की शाम थोड़ी सी ठंडी है। मौसम जो है वो आए दिन रंग बदल रहा है, कभी एकदम से गर्मी, कभी एकदम से सर्दी। तो ऐसे में अपना ख्याल रखिए और अपने आप को इस बदलते मौसम से बचाइए। ये हमारी तरफ से आपके लिए संदेश रहेगा और ज़रूर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हर काम करने में आपको भी अच्छा लगेगा। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में फिर से एक बार से शुरुआत करते हैं प्यारे से गीत के साथ। लीजिए नागिन फिल्म का ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं सुमन कल्याणपुर और किशोर कुमार की आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपसे करेंगे बात आज की शाम की, यानी कि रविवार की इस सुहानी शाम की बात थोड़ा सा करते हैं। श्रोताओं, एक और सप्ताह हमारे सामने खड़ा है, नई उम्मीदों, नए अवसरों और नए सपनों के साथ। रविवार की शाम हमें ये मौका देती है कि हम बीते हुए सप्ताह पर नज़र डालें, अपनी सफलताओं से प्रेरणा लें और अपनी गलतियों से सीखें। बिल्कुल श्रोताओं, ये हफ्ता हमारा कैसा जाता है, कैसा नहीं जाता है हमें पता होता है, और हमने इस सप्ताह में कौन कौन से काम जो हैं वो सही ढंग से नहीं किए, कौन सी गलतियां की, क्या हमने सीखा, ये सभी चीज़ें जो हैं वो आज हमें ज़रूर सोचनी चाहिए। ज़िंदगी में हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। ज़रूरी नहीं कि हर दिन बड़ा बदलाव लेकर आए, लेकिन छोटी छोटी सकारात्मक कोशिशें ही बड़े बदलाव की नींव बनती हैं। इसलिए आने वाले सप्ताह के लिए अपने मन में सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और उत्साह बनाए रखिए। और श्रोताओं, याद रखिए, खुशियाँ बड़ी चीज़ों में ही नहीं बल्कि परिवार के साथ बिताए गए पलों, दोस्तों की मुस्कान और अपने काम के प्रति संतोष में भी छिपी होती हैं। तो याद रखिए, सकारात्मक सोच बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। सोच हमारी जैसी होगी, काम भी हमारे वैसे ही होंगे, और सफलता विफलता भी हमें उसी के अनुसार मिलेगी। अपनी सोच को बड़ा रखिए और ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताइए जो आपकी सोच को सकारात्मक रखने में आपकी मदद कर सकते हों। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में बातों के साथ साथ हम लोग गीतों को बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं, और गीतों में अब हमने आपको सुनवाना है एक और प्यारा सा गीत, दिल तुझको दिया। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत आप सभी के रेडियो सेट पर हम लोग भेज रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी इस समय सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला पर। और आज का ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, थोड़ी सी बात हम आपके साथ ही ये करेंगे कि आए दिन हम लोग बहुत सारी खबरें पढ़ते हैं, बहुत सारी खबरें सुनते हैं, जिन्हें सुनकर और पढ़कर कई बार सोचने पर हमें मजबूर होना पड़ता है। कई बार बहुत सारी हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ कहीं जाकर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं। हम ये नहीं कहते कि एडजस्ट मत कीजिए, कीजिए, लेकिन वहीं तक जहाँ तक आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। अगर आप ही एडजस्ट करते रहे, दूसरे ना करें, तो वो आपके लिए हानिकारक है। और वो चीज़ें ऐसे मोड़ पर आ जाती हैं जब हमारी ज़िंदगी हमारे हाथों से निकल जाती है। तो श्रोताओं, ज़िंदगी आपकी अपनी है, उसे कहाँ तक कैसे हमें मोल्ड करना है वो हमें पता होता है। बहुत ज़्यादा कोशिश अगर हम करेंगे किसी रिश्ते को निभाने के लिए और उसमें अगर हम अपने आप को खो देंगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो श्रोताओं, आपके साथ हम लोग कार्यक्रम में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ भी शेयर करते रहते हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और इसी आदत में कहीं ना कहीं हमारी भी एक आदत बन जाती है कि कहीं भी हमें कोई भी अगर बात, कोई भी कहानी अच्छी लगती है तो हम उसे शेयर सेव कर लेते हैं ताकि हम अपने श्रोताओं के साथ उसे साझा कर सकें। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी मैंने भी कहीं पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा था कि इस कहानी को अपने श्रोताओं तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। तो श्रोताओं, आपको एक कहानी सुनानी है जिससे शायद आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। एक गुरुजी थे, शिक्षक थे, और उन्होंने अपने छात्र को कांच का एक छोटा गिलास और एक बड़ा गिलास दिया और कहा, बड़े वाले गिलास को छोटे वाले गिलास के अंदर डालो। तो छात्र क्या बोलता है कि गुरुजी, ये तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। गुरुजी ने दूसरे छात्र को बुलाया, दूसरे छात्र ने बड़े वाले गिलास के बहुत सारे टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आसानी से छोटे वाले गिलास में डाल दिया। तब वो जो गुरुजी थे, वो जो शिक्षक थे, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में यही कर रहे हैं, जहाँ फिट नहीं बैठते वहाँ खुद को तोड़कर फिट बिठाने की कोशिश करते हैं। जहाँ टूटकर रिश्ता निभाना पड़े उससे अच्छा है अलग हो जाओ। रिश्ता वहीं तक निभाओ जहाँ तक एडजस्ट कर सकते हो। अगर टूटकर बिखर गए, अगर तुम्हारा वजूद ही समाप्त हो गया, फिर कैसा रिश्ता, कैसी जिंदगी। जाने वालों को इज्जत के साथ विदा करो और आने वालों का स्वागत करो। इस धरती पर तुम जीने आए हो, मर मर कर जीने नहीं आए हो। तो श्रोताओं, ये कहानी कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर छू कर गई और बहुत कुछ इस कहानी ने सिखाया भी है। और उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लगेगी और आपने भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस कहानी में बात ढूंढी ली होगी। तो ऐसी कहानियाँ कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सोचने का पर मजबूर करती हैं, जो हमें सोचना भी चाहिए। तो इन बातों के साथ और इस कहानी के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में और आपको सुनवाएंगे सरगम फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की प्यारी आवाज़ों में लीजिए सुनिए इस प्यारे से गीत को।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी इस समय सुन रहे हैं और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में श्रोताओं, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हम लौटेंगे कार्यक्रम में और आपके साथ करेंगे बातचीत। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में हम फिर से जुड़ गए हैं। श्रोताओं, कई बार हम लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम हर दिन जो है वो किसी न किसी आस में जीते हैं। आज अगर हम जी रहे हैं तो हमारे दिमाग में कल के लिए कोई ना कोई प्लानिंग होगी, और कल कल के लिए इसी तरह से रोज़ हम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और ये समय कब बीतता चला जाता है पता भी नहीं चलता। और ऐसे में ही एक लाइनें हैं जो आपको सुनाऊंगी। कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, कभी जी ना सके हम आज के लिए, बीत रही है ज़िंदगी कल आज और कल के लिए। बिल्कुल श्रोताओं, ये ज़िंदगी यूं ही बीत रही है बस सोच विचार में कि आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, लेकिन हम इसी उधेड़ बुन में अपने आज को नहीं जी पाते हैं और अपने आज में हम रह ही नहीं पाते हैं। तो अपने आज को ज़रूर जिए, यानी कि जो भी पल, जो भी समय हमें मिलता है उस समय को हम खुशी से जिए, हर पल को ऐसे जिए कि वो यादगार पल बन जाए। और ये जो सोच विचार वाली एक कड़ी हमारी चली रहती है, उसे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा विराम देना चाहिए। कई बार कुछ बातें जो है वो भगवान पर छोड़ देनी चाहिए, जो होगा अच्छा होगा ये सोच हमें ज़रूर रखनी चाहिए। तो कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अंदाज फिल्म का गीत कुमार शानू की आवाज़ में।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और 7:45 पर आप शिमला से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। तो समाचारों से पहले आपको लिए चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर, कटी पतंग। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत आप तक पहुँचा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में।

आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भीषण गर्मी

0: जनगणना कार्य में भाग लेने का किया आग्रह। कल से स्वगणना पोर्टल पर जानकारी दर्ज करवा सकेंगे लोग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में गर्मी के मौसम में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना और सोन कड़ी का सेवन करना उपयोगी है।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। इससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है।
2: नीदरलैंड में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापिस सौंपी गयी। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहचान बनाई है और आम देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
2: मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है। ऐसे ही छाए रहिए। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारा मंडल देखने की अपील भी की। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 3 नगर निगमों में शानदार जीत हासिल कर ली है। राज्य में 17 मई को 4 नगर निगमों में वोट डाले गए थे, जिनकी आज मतगणना की गई। धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगम पर भाजपा ने कब्जा किया है, जबकि पालमपुर नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी है। धर्मशाला नगर निगम में कुल 17 वार्डों में से भाजपा ने 11, कांग्रेस ने 5 और निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 वार्ड पर जीत हासिल की है। इसी प्रकार सोलन नगर निगम में भाजपा को 10 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 6 वार्डों में ही जीत हासिल हुई है। 1 वार्ड पर निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। मंडी नगर निगम में 15 वार्डों में से इस बार 14 वार्डों में ही मतदान हुआ। इनमें से 12 पर भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी को 1 वार्ड में जीत मिली है। मंडी के बहना वार्ड में लोगों ने स्थानीय विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया और यहां मतदान नहीं हो सका। उधर पालमपुर नगर निगम पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया है। शहर के कुल 15 वार्डों में से 11 पर कांग्रेस और 4 वार्डों में भाजपा को जीत मिली है। कांगड़ा जिले में नगर निगम चुनावों के नतीजों पर अधिक ब्यौरे के साथ प्रस्तुत है हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे नगर निगम चुनावों में प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा से भाजपा

0: कांग्रेस दोनों के लिए मिश्रित संदेश सामने आया है। धर्मशाला में भाजपा की इस जीत को स्थानीय विधायक सुधीर शर्मा के प्रभाव और संगठनात्मक मजबूती से जोड़कर देखा जा रहा है। इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि कांगड़ा की राजनीति में मुकाबला अभी भी बेहद रोचक और संतुलित बना हुआ है। मिशन 2023 की दिशा में दोनों दलों के लिए चुनाव एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत साबित हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑन ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि प्रदेश में पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को भारी जनसमर्थन मिला है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि प्रदेश में लगभग 2400 कांग्रेस समर्थित पंचायत प्रधान व 2300 उप प्रधान विजयी हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नगर निगम चुनावों के आधार पर पूरे प्रदेश का माहौल अपने पक्ष में होने के दावे कर रही है, जो गलत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम के चुनावों लोग स्थानीय विधायक को देखकर वोट देते हैं। उधर मंडी नगर निगम में भाजपा की प्रचंड जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज मंडी में एक विजय रैली निकाली। रैली को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया कि ये जनादेश प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ है और जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 3 नगर निगमों के चुनावी नतीजे प्रदेश की बदलती राजनीतिक दिशा का संकेत है।
2: सबसे बड़ी बात तो है जो पार्टी के जो कार्यकर्ता ने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, पसीना बहाया, तब जाकर के ये जीत हुई है। लेकिन आज मैं इन सभी काउंसलर से इस बात के लिए भी आग्रह करूंगा, अगर कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया है, अब आपको पसीना बहाना है मंडी के बेहतरी के लिए, मंडी के विकास के लिए। हम मिलकर के काम करेंगे।
1: प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को हुए जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना भी आज की गई। इनमें जिला परिषद की कुल 251 और पंचायत समिति सदस्यों की 1669 सीटें शामिल हैं। हालांकि जिला परिषद और बीडीसी के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं करवाए गए, लेकिन भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत के दावे कर रही हैं। 3 चरणों में हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में लगभग 81% मतदाताओं ने वोट डाले और मतदान को लेकर सभी आयु वर्ग के लोगों में खासा उत्साह देखा गया। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने सोलन सहित प्रदेश के 3 नगर निगम चुनावों में पार्टी की जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने आज सोलन में कहा कि इस जीत से ये स्पष्ट हो गया है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी। सुरेश कश्यप ने कहा कि इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों को जाता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी लोगों से जनगणना कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जनगणना 2 चरणों में की जाएगी और पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई के बीच चलेगा। इस दौरान मकान सूचीकरण, मकान गणना और जनसंख्या की गणना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कल 1 जून से 15 जून तक लोग स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने लोगों से स्वगणना विकल्प का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी तक चलाया जाएगा, जबकि प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना कार्य का दूसरा चरण 11 सितंबर से 30 सितंबर तक होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भीषण गर्मी में सावधानी बरतने और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने का किया आग्रह। धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगम पर भाजपा का कब्जा। पालमपुर में कांग्रेस ने मारी बाजी। मुख्यमंत्री का दावा, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को मिला भारी जनसमर्थन। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा, जनता ने भाजपा की नीतियों पर जताया भरोसा। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की भी आज हुई गणना। देर रात तक सभी परिणाम आने की उम्मीद। और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से जनगणना कार्य में भाग लेने का किया आग्रह। कल से स्वगणना पोर्टल पर जानकारी दर्ज करवा सकेंगे लोग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। समाचारों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का समय भी अब यहीं पर समाप्त होता है कुछ ही पलों में। और चलते चलते बस आपसे यही कहेंगे कि अपना ख्याल रखिए और इन्जॉय कीजिए कार्यक्रम का आखिरी गीत हमजोली फिल्म से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में सुनिए कार्यक्रम का ये आखिरी गीत। और इस गीत के साथ ही अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को दीजिए आज के लिए जाने की अनुमति। शुभ रात्रि।

0: www.govin.
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: घर सूर्य घर।
5: सुनो, आपने क्या सोच के मुझसे शादी की थी?
6: सोचने का तो टाइम ही नहीं मिला।
5: क्या मतलब?
6: मतलब सोचने का टाइम ही नहीं मिला। जैसी तुम्हें देखा मैंने डिसाइड कर लिया शादी करनी है तो इसी से कर। सोचने समझे में कोई और भी आके ले जाता तो
5: आ,
6: तुम भी।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: घर सूर्य घर।
6: सुनो, आपने क्या सोच के मुझसे शादी की थी?
7: सोचने का तो टाइम ही नहीं मिला।
6: क्या मतलब?
7: अरे मतलब सोचने का टाइम ही नहीं मिला, जैसे ही तुम्हें देखा मैंने डिसाइड कर लिया शादी करनी है तो इसी से कर। सोचने समझे में कोई और भी आके ले जाता तो
6: आप भी
7: तुम भी।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख

0: पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग। हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा।

0: ये देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: सुनो, आपने क्या सोच के मुझसे शादी की थी?
5: सोचने का तो टाइम ही नहीं मिला।
4: क्या मतलब?
5: अरे मतलब सोचने का टाइम ही नहीं मिला, जैसे ही तुम्हें देखा मैंने डिसाइड कर लिया शादी करनी है तो इसी से कर। सोचने समझे में कोई और भी आके ले जाता तो
4: आ,
5: तुम भी।

रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून्ड विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।